सुप्रभात। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सबों का आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे थे समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रतिमा वर्मा की पूर्व प्रसारित आलेख। विषय है पॉली हाउस से बेमौसमी सब्जी का उत्पादन।
4: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं आज की कड़ी में है पौधे की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है। श्रोताओं यदि फल देने वाले पौधे में कटाई छटाई या कृदंत का कार्य न किया जाए तो वह जंगली पौधे की तरह बढ़ने लगते हैं, उन पर कोई भी फल पैदा नहीं होते। हालांकि सभी फल देने वाले पौधे में कटाई छटाई क्रिया आवश्यक नहीं पड़ती है। यदि फल देने वाले पौधे में कटाई छटाई का कार्य नहीं किया जाता है तो वह जंगली पौधे की तरह बढ़ने लगते हैं और उन पर कोई भी फल नहीं हो पाते। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनके

0: कटाई छटाई नहीं की जाती है। जैसे कि छोटे फल वाले पौधे केला अनानास और पपीता आदि को अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही बढ़ने दिया जाता है, मगर बहुत से पर्णपाती फल वृक्ष जैसे सेब नाशपाती आड़ू और अंगूर में नियमित रूप से कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे में कटाई छटाई कर सूर्य के प्रकाश को पौधे की जड़ों तक पहुँचने के लिए स्थान बनाया जाता है, वृक्षों को अधिक मजबूत बनाया जाता है, पौधे को सुंदर बनाया जाता है, नए फल उत्पन्न करने वाली शाखाओं की वृद्धि तीव्र होती है, पौधे को पर्याप्त मात्रा में हवा एवं प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, साथ ही रोगों एवं कीटों से भी रोकथाम हो पाती है। घने कलियों या छोटे पत्तों का विरलीकरण करके फलों का आकार बढ़ाना होता है, लेकिन कटाई छटाई करने के कुछ नियम भी हैं। सबसे पहले पौधे में मरी या सूखी हुई रोगग्रस्त एवं कमजोर शाखाओं को काटकर अलग करना चाहिए। पौधे की आर पार जाने वाली और एक दूसरे पर चढ़ी हुई शाखाओं को काट देना चाहिए। अगर शाखाएं जमीन के बहुत संपर्क में है तो उन्हें काट देना चाहिए। शेष बची हुई शाखाओं को या उनके कुछ हिस्सों को इस तरह से काटना चाहिए कि कटान साफ एवं सीधे हो। अगर पौधे में कार्बोहाइड्रेट की कमी से फलन कम हो तो जड़ों का क्रिंदन कुछ मात्रा में कर देना चाहिए। पौधे में छटाई दो विधि से की जाती है। पहली विधि है पिंचिंग। इस विधि के तहत तने या शाखाओं के ऊपरी सिरे 2 से 3 पत्तियों के साथ तोड़ दिए जाते हैं। इसे अधिक एक वर्षीय पौधे जैसे डहेलिया गुलदाउदी आदि में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से है वलियन। जब किसी तने या डाली से लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबाई में छाल वलय के रूप में काट कर निकाल दी जाती है तो इस विधि को वलियन कहा जाता है। अब जैसे अनार के वृक्ष में 3 से 4 साल तक फल लगने की क्षमता होती है और इसमें आयु बढ़ने के साथ ही साथ गिरावट आती है, नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने दल पुष्टों की छटाई मामूली रूप से हल्का विरलीकरण करने की जरूरत होती है। छटाई से फल कीटाणु गुणवत्ता बढ़ जाते हैं एवं अनुकूल इसमें प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। उच्च सघन छटाई से फल के आकार और उच्च ग्रेड के फल की पैदावार में वृद्धि होती है। पौधे की जब छोटी अवस्था में कटाई छटाई की जाती है तो उसके अधिकतर शक्तिशाली ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं तथा तेज हवा आंधी और तूफान आदि से भी सुगमता से वे नहीं टूट पाते। घने फल वृक्षों की शाखाओं को काट काट कर पौधे को खोल दिया जाता है जिससे हवा में प्रकाश अधिक मात्रा में पौधे के अंदर प्रविष्ट हो सके। फल वृक्षों की कटाई छटाई से उनकी ऊंचाई भी कम हो जाती है जिससे फलों की तुड़ाई सुगमता से हो पाती है और कम समय तथा कम खर्च के साथ ही वो उस तोड़ पाना संभव होता है। पौधे के ऐसे भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है जिन पर कीड़ों का प्रकोप हो या रोगग्रस्त हो जिससे ये और आगे ना पनप कर हानि पहुँचाए पौधों को। जब फल कलियाँ अधिक घनी पैदा होती हैं तो बीच से कुछ कलियों को निकाल देना चाहिए या फिर गुच्छे के नीचे से कुछ फलों को तोड़कर अलग कर देते हैं जबकि ये छोटे छोटे होते हैं। ऐसा करने से शेष फलों का आकार बढ़ जाता है। इस तरह से बहुत अच्छी फसल लेने के लिए उनकी कटाई छटाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ ही उन शाखाओं को हटाना महत्वपूर्ण है जो हर वैकल्पिक वर्ष में केवल फल देती है या बिल्कुल भी फल नहीं देती है। इस तरह से किसान भाई यदि पौधे की कटाई छटाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो बागवानी फसलों की पैदावार अच्छी होगी। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे सुनीता अग्रवाल की पूर्व प्रसारित आलेख। विषय था पौधों की कटाई छटाई कितना आवश्यक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। अब आइए सुनते हैं हमारा आज का चिंतन
1: कि मनुष्य समाज में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की संगति प्राप्त करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उसे लाभ होता है, उसका कल्याण होता है, अन्यथा बुरी संगति के कारण वह जीवन में असफल होकर दर दर की ठोकरें खाता है। अच्छी संगति वाला दुर्जन भी वैसा ही अच्छा जीवन जीते हैं जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। षठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सतसंगति के द्वारा मनुष्य न केवल अपना भला करता है अपितु वह अपनी जाति, समाज और राष्ट्र को भी पूरी तरह से लाभान्वित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी इसकी महिमा गाई है, सुनी आचरज करे जने कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति साधुओं की संगति होती है जो सब प्रकार से वंदनीय और प्रार्थनीय होती है। साधुओं की संगति तो सभी गुणों की खान है जो अवगुणों को भी सद्गुणों में बदल डालती है। सत्संगति दो प्रकार की होती है, प्रथम साधु और सज्जन पुरुषों के साथ रहने से और दूसरी हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। ये दोनों ही प्रकार की संगति हमें विवेक और सद्ज्ञान प्रदान करके जीवन मुक्ति के साधनों का पथ प्रदर्शन करती हुई संसार की अज्ञानता में डूबे हुए व्यक्ति को उपकार के मार्ग पर चलाती है। इसीलिए सत्संगति के लिए कहा गया है कि वह अज्ञानी से अज्ञानी और जड़ से जड़ पदार्थों को भी ज्ञानवान और चेतनशील बनाती है। संगति से मनुष्य को केवल लाभ ही लाभ है। हमारे नीति के श्लोक से भी यह बात समझ में आती है, जाइये धियो हरिति सिंचति वाचि सत्यम, मनोनति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति अज्ञानता का हरण करके मनुष्य की वाणी में सत्यता को प्रविष्ट कराती है, मन की उन्नति करके चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति पताका फहराती है, चेतना को बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। जो अच्छी संगति में रहता है उसके ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई बुराई असर नहीं करती। जैसे रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बातचीत करने से एवं उन्हें सुनने मात्र से सहज ही दुर्बुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति में कदाचार, कर्तव्य पालन, धर्मनिष्ठा, व्यवहार कुशलता तथा मन वचन और कर्म की पवित्रता आदि सद्गुणों का विकास होता है। सज्जनों की संगति से मूर्ख भी चतुर बन जाते हैं। अच्छी संगति के प्रभाव से मनुष्य दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानी बनकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जैसे वाल्मीकि लुटेरे और डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग के प्रभाव से उच्च कोटि के संत, भक्त और आत्मज्ञानी हुए। अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लेकिन भगवान बुद्ध के सत्संग के प्रभाव से उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, दूर हो गए। इसीलिए दुष्टों से दूर रहकर सत्संगति में रहना हमारा ध्येय होना चाहिए।
0: आप सुन रहे थे हमारा आज का चिंतन। शीर्षक था सत्संगति का प्रभाव, आलेख और वाचन स्वर अनुपमा तिवारी का। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना। मुख्य स्वर दिया था अनुराधा पुडवाल ने। अब आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में लीजिए, हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार से ली गई पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता, विषय है हृदय रोग कारण और उसका निदान। बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: और आपको इसका पता भी नहीं लगता है, एक ऐसी ही बीमारी है हृदय रोग, या जिसे हम दिल की बीमारी कहते हैं, उससे आप पीड़ित हो जाते हैं और फिर समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि हृदय रोग होने का कारण क्या है और इसका होम्योपैथिक पद्धति द्वारा आप किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार जी, स्वागत है। सबसे पहले हम जानें कि किस प्रकार हमारा दिल धड़कता है।
2: यह हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट हम लोग कहते हैं। हमारे शरीर में ये रक्त संचार इसके थ्रू होता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये हार्ट काम कैसे करता है। ये हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको शरीर से वापस लंग्स तक भेजता है। लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है और उस ऑक्सीजनेशन के बाद में ये फिर दोबारा हार्ट पे जाता है, और हार्ट में जाने के बाद ये फिर पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पहुँचाता है।
1: तो जो प्रमुख बीमारी है दिल की, वो कौन कौन सी है, लक्षण क्या है इसके, ताकि समय रहते हम इसका उपचार कर सकें।
2: आज के समय में हार्ट अटैक पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कॉज है डेथ का। हर 5 में से 1 मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही है, जो एक गंभीर विषय आज के लिए बना पड़ा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है काम करने के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कोरोनरी आर्टरी उसे प्रोवाइड करता है। इसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट काम करना बंद कर देता है, या पार्शियली हार्ट काम करने बंद कर देता है। इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, या फिर इस्केमिक आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसमें जैसे लक्षण में आएंगे चेस्ट पेन, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशंस, सिनकोप्स, पेडल एडिमा, इस तरह के लक्षण आएंगे। थोड़ा सा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेस्ट पेन, आम धारणा बनी हुई है कि ये जो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है वो लेफ़्ट साइडेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लेफ़्ट साइडेड ना होके ये सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। ये डिफ्यूज़ इन नेचर होता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह में नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी छाती में ये दर्द भारीपन हो रहा है। इसका दर्द किस तरह का होता है, इसमें भारी वजन, ऐसा लगता है कि छाती पे कोई भारी वजन रखा हुआ है, या फिर कोई बेल्ट से ज़ोर से कस दिया है छाती को, इस तरह का पेन को हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं। ये कब होता है, ये तब होता है जब हम लोग कोई एक्सर्शन करते हैं, यानी जब हम लोग कोई मेहनत वाला काम करते हैं।
1: तनाव से हम जब गुजरते हैं तो ये लक्षण भी दिखाई पड़ने लग जाता है।
2: तनाव से भी हम लोग गुजरते हैं। एक्सर्शन मतलब जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ा देर लंबा चलते हैं, या कोई भारी वजन उठाते हैं, और इसमें इस तरह का पेन होना चालू हो जाता है, और वो भी कुछ देर के लिए होता है। जो कि हम लोग रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने के बाद में ये आराम आ जाता है। इस तरह का दर्द को हम लोग एंजाइना बोलते हैं। ये चेस्ट पेन है, ये कार्डियक ओरिजिन का होता है। ये चेस्ट पेन 2-3 केसेस में नहीं होता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उसमें ये चेस्ट पेन नहीं होता है। जो पेशेंट बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी उम्र वाले होते हैं, उनको ये नहीं होता, और ये फीमेल पेशेंट को भी जनरली ये चेस्ट पेन नहीं होता है। कई बार लोग सीने में दर्द का भी बताते हैं, जो कि लोकल होता है, एक छोटे से जगह पे होता है। बोलते हैं कि चुभन जैसा दर्द हुआ। ये एक्चुअली में हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। हार्ट अटैक का कोई ये संबंध नहीं है इससे। एक लक्षण हुआ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे हम कैसे समझेंगे कि ये कार्डियक ओरिजिन का है? जब सोने के समय 2-3 मिनट तक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम फूलने लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए दम फूलता है। सेम इसी तरह से पाल्पिटेशंस में भी होता है, दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है लेटते समय, या फिर किसी तरह का हेवी काम करते समय बहुत पसीना भी आने लगता है, स्वेटिंग भी आने लगता है। तो ये सारे लक्षण मिलके सजेस्ट करते हैं कि ये कार्डियक ओरिजिन का है, यानी ये एंजाइना हार्ट अटैक का संबंधित है। इसके लिए हम लोग को तुरंत जाके इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: इस तरह के जो लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप चिकित्सक की सलाह लें। और डॉक्टर साहब, हम सावधानियां क्या रखें और खान पान में हम किन किन चीज़ों से दूरियां बनाएं ताकि ये बीमारी नहीं हो और हम स्वस्थ रहें?
2: इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों को यह ज़्यादा तकलीफ देता है, ये जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई शुगर है, जो बहुत मेंटल स्ट्रेस

0: लोगों को काफी तकलीफ देता है और इसमें हमें कंट्रोल करना जरूरी है। इसमें हम लोग जो कंट्रोल करते हैं वो लाइफस्टाइल में सुधार करने से है, यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनसे ये आग्रह किया जाता है कि अब आप स्मोकिंग ना करें, जो ओवरवेट होते हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज वजन कम करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। डाइट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइबर्स हमारे खाने में ज़्यादा हो उसका हम लोग प्रयोग करें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में ज़्यादा हो उसका प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जैसे फल, जैसे सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अंगूर में होता है, काला वाला अंगूर में होता है, अमरूद में होता है, तो इस तरह के फलों का प्रयोग करें, जूस पिएं, फाइबर्स ज़्यादा खाएं, जैसे अब सेब खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार के ना खाएं, छिलका सहित खाएं, इससे फाइबर्स भी हमारे शरीर को मिलेगा जो कि हार्ट को हेल्प करेगा। ओट्स, जिसे हम लोग हिंदी में जई बोलते हैं, जई का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर हम लोग चाय पीते हैं तो ग्रीन टी पिएं, और अर्जुन का एक छाल आता है, अर्जुन के छाल को उबाल के उसको भी चाय जैसा हम लोग पी सकते हैं। तो ये तो सावधानी, ये जो चीज़ है कि हम लोग क्या अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, क्या अच्छे खाने खा सकते हैं, हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। अब हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इसको दूर रखने के लिए, या जो भी पेशेंट जिनका हार्ट कमज़ोर है वो कोशिश करें कि एनिमल फैट ना खाएं, एनिमल मीट जैसे मटन हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, एग योल्क हुआ, यानी अंडे के पीला वाला भाग उसको ना खाएं। अब जैसे दूध भी अगर पीते हैं तो वो दूध में स्किम्ड मिल्क तो ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी चर्बी रहित दूध अगर हम लोग पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में भी तेल होता है, तो ये तेल भी दिक्कत है, तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम लोग अगर रात में छोड़ दें और सुबह उठ के खाएं, इसका तेल भी हम लोग को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लास्टली, तेल, आजकल हम लोग तेल बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिए हैं, हर दिन के हर आहार में हम लोग का खाने में तेल होता है, तो इसको जितना कम से कम किया जा सके, तला भुना ऑयली फ्राइड फूड हम लोग ना खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बात। इसको हम लोग होम्योपैथिक उपचार किस तरह से कर सकते हैं, तो दो तीन दवाइयां हैं जो कि अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, अगर आपको पता है कि आपका हार्ट कमज़ोर है या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो दो तीन दवा हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के वॉल्व्स को, हार्ट के सर्कुलेशन को यानी वेसल्स को भी डायलेट करके, तो ये रखता है, जैसे कि अर्जुना है। ये अर्जुना आयुर्वेदा में भी होता है, ये होम्योपैथी में भी होता है। ये अर्जुना, एक अर्जुन का पेड़ होता है, उसका छाल को उबाल के पीने के लिए तो मैं पहले भी एडवाइस किया था। यही चीज़ हमारे होम्योपैथी में भी टिंचर फॉर्म में होता है। इसका डोज हम लोग लेते हैं 20 बूंद तीन बार, एक चौथाई कप पानी के साथ। दूसरी दवा है कैक्टस, ये भी हार्ट की टॉनिक ही है और हार्ट का फंक्शन को ठीक करता है। ऐसे दो तीन और दवाइयाँ हैं जैसे कॉन्वोलेरिया, स्ट्रोफेंथस, कैम्फोरा और क्रैटिगस।
1: तो ये दवाइयाँ व्यक्ति स्वतः ही ले सकता है या चिकित्सक की सलाह से ले, जैसे अर्जुन की बात आपने करी?
0: जी नहीं, इसमें चिकित्सक की सलाह, होम्योपैथी में चिकित्सक की सलाह ज़रूरी होती है। उसमें ये ओरिजिन भी हम लोग देखते हैं। होम्योपैथी में हम लोग बीमारी को नहीं देखते हैं, बीमार को देखते हैं। पहले हम लोग उसकी सारी फिजिकल, मेंटल, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, क्रेविंग, एवर्जन्स, ये सारे चीज़ देख के उससे मैच करती हुई दवाइयाँ देते हैं, और प्लस एड ऑन में इस तरह की भी दवाइयाँ देते हैं जैसे अर्जुना हुआ, कैक्टस हुआ, क्रैटिगस हुआ।
1: अंत में क्या सलाह देंगे कि आप रोज़ सैर करें, थोड़ा सा आप फिजिकल वर्क भी करें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें?
0: मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि खाने में तेल का मात्रा कम रखें, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे सुबह उठ के सैर करना, स्मोकिंग, स्पेशली स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहना, यही एडवाइस करूँगा मैं।
1: तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से आप यदि दूरियाँ बनाते हैं, तला भुना आप नहीं खाते हैं और फाइबर का अधिक से अधिक आप सेवन करते हैं।
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय कुमार से ली गई पूर्व सहित भेंटवार्ता। विषय था हृदय रोग, कारण और उसका निदान। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से आप सुनेगा क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88,00,000 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24,000,000 वर्षस्य अथ च 25,000,000 वर्षस्य अकादमी पुरस्कार

0: Normal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:15 पर हम आपको सुनाएंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे परवीन सुल्ताना से राग अहिर भैरव में शास्त्रीय गायन। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनिएगा कार्यक्रम स्वर सरिता। कलाकार होंगे चंदन दास।

समाचार प्रभात सुबह के 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज प्रादेशिक समाचार आप सुनिएगा हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 पर। पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे 8:45 से। कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनते हैं जोहार पलामू सुबह के 9 बजे से। नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के ठीक 10 बजे आप सुनिएगा हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 से। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:10 से। दोपहर में 1 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 1:05 पर। प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनेंगे 1:10 से और पुनः 1:20 पर आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। लौटेंगे स्टूडियो शाम 5:30 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। पाँच बजकर 35 मिनट पर आप सुनेगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे हम शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर हम आपको सुनाएंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। 6:30 कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। प्रादेशिक समाचार आप सुनिएगा 7 बजे और जिले में आजकल 7:10 से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग हम लेकर आएंगे 7:15 पर। क्षमा करेंगे, ये कार्यक्रम होगा 7:30 पर और 7:15 पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। उजाले की ओर ये प्रोग्राम हम लेकर आएंगे 7:45 से। रात्रि 8 बजे आप सुनिएगा फिल्म संगीत का प्रोग्राम चित्रपट से और 8:10 पर एक विशेष कार्यक्रम आप सुनते हैं वर्तमान सरकार के 12 वर्ष

समाचार संध्या 8:45 पर News8 9 रात्रि 9 बजे और उर्दू में खबरें 9:15 से। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 9:30 से। लौटेंगे स्टूडियो रात्रि 10 बजे और सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे आप सुनिएगा हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना से राग अहिर भैरव में शास्त्रीय गायन। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। कलाकार हैं चंदन दास।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टन गंज केंद्र से और इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। कलाकार हैं चंदन दास।

0: जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
5: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
3: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना

0: वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिमी एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश।

30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी, बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की

पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों

0: 27 तक पूरी होगी, जिससे मानगो वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
1: एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जाम की समस्या का निजात मिलेगा। पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि 26 के लास्ट में और 27 की शुरुआत में बंद के चालू हो जाएगा। मात्र 1 किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस राज्य सरकार नहीं दे रहा है, जिसके चलते परेशानियां हो रही है।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मामले में राज्य सरकार की संशोधन याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। साथ ही कैवियट दायर करने वाले पक्षकारों को याचिका की सॉफ्ट कॉपी देने का आदेश दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ के आदेश में संशोधन के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के नए अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा मद में 10 करोड़ 70 लाख का बजट जारी किया है। इसमें से 3 करोड़ 60 लाख राज्य के 6 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और राजकीय फार्मेसी संस्थान के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित है। बाकी राशि का उपयोग चिकित्सा संस्थानों में बिजली, पुस्तकालय, भवन मरम्मत, नए वाहनों की खरीद और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश, एंटी रेबीज और अन्य जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए निर्देश दिए हैं। मौसम जनित बीमारियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी दवाओं की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चतरा महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम का समापन हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस संयुक्त कार्यक्रम में 60 शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा और AI का प्रशिक्षण दिया गया। समापन पर कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि आने वाला समय विकसित भारत 2047 और AI का होगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले चरण में विश्वविद्यालय के 50 शिक्षक विशेष प्रशिक्षण के लिए BHU जाएंगे और भविष्य में 1 लाख छात्र छात्राओं को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन रद्द करने की मांग पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया।
2: लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को विधानसभा के गेट के बाहर रखने का काम किया वहां का प्रशासन ने, और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब विधानसभा के अंदर घुसे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भेदभाव की राजनीति प्रशासन करना बंद करे, ये आरोप की जिम्मेवारी है कि बिना दबाव में आए जो सही है उसको सही करें, जो गलत है उसको गलत करने का काम करें।
0: इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के नामांकन में कई त्रुटियां होने के बावजूद उसे रद्द नहीं किया गया। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ले जाने की बात कही।
3: मध्य प्रदेश में हमारे मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थे उनको 15 मिनट में जब त्रुटि पाई गई तो उन्हें रद्द किया गया, और यहाँ पर हमारे द्वारा जो आपत्ति की गई उससे 24 घंटा का समय दिया गया, उसमें कई त्रुटियां थी।
0: धनबाद के टाउन हॉल में झामुमो ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय सचिव विनोद पांडे और टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो की मौजूदगी

0: में हुए इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को आगामी SIR और मतदाता सूची पुनरीक्षण की बारीकियां सिखाई गईं। विनोद पांडे ने बताया कि 30 जून से शुरू होने वाले इस अभियान से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और एजेंटों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी था।
1: आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना BLA 2 और बूथ स्तर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कैसे करेंगे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। जो 30 तारीख से SIR की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो आप अपने बूथ पर किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के 9 जिलों में आज से 14 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गुड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में कहीं कहीं तेज बारिश होने की आशंका है। इस मौसम बदलाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T20 लीग का रंगारंग आगाज हो गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कल देर शाम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण किया। आज मैदान पर दो रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से होगी, जबकि दूसरे मैच में रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वैध होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कांग्रेस की आपत्ति खारिज, नाथवाणी मैदान में कांग्रेसियों ने धरना दिया तो भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे विधानसभा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 4 में से जिन 3 नामों पर लोकभवन को थी आपत्ति, वही बनाए गए सूचना आयुक्त। हिंदुस्तान के शब्द हैं, जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड अब CEO के डिजिटल हस्ताक्षर से होंगे प्रमाणित। दैनिक जागरण लिखता है, 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर 2 चिकित्सा पदाधिकारी निलंबित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश, 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: Acaso?
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय सिन्हा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है चरणों की सौगंध।

किशोर कुमार के साथ सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म है वारिस। गीत रचना वर्मा मलिक हैं और संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

धूल का फूल। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन अब समाप्त होता है।

0: FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा प्रोग्राम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। सभी सुनने वाले को हमारा नमस्कार और जोहार। सबसे पहले आज का विचार, महानता बहुत बड़े होने का एहसास नहीं देती, लेकिन इसकी शुरुआत बड़े कार्यों से नहीं, छोटे छोटे कार्यों से ही होती है। हमारे छोटे छोटे कार्य, हमारा दृष्टिकोण, इसी में महानता के बीज झलकते हैं, अंकुरित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें सुविकसित करके हम श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। महान दिखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वे हमें कभी भी महान नहीं बना सकते, क्योंकि महानता कभी भी दिखावटीपन में नहीं आती। या तो अंदर की एक प्रेरणा है जो हमारे साधारण से व्यवहार का कार्य में ही झलक जाती है। तो इस आस के विचार के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्मी गीत।

हम बातें करेंगे खेल की। बारिश के बीच झारखंड T20 लीग का आगाज़, माही के दीदार के लिए जो है स्टेडियम में भीड़ लगी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड T20 लीग का भव्य

विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग मैच देखने पहुंचे। दर्शकों में सबसे अधिक उत्सुकता महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए लेकर देखी। धोनी के स्टेडियम पहुंचने ही फैन का उत्साह चरम पर पहुंच गया। कई दर्शक मैच समाप्त होने के बाद भी अपनी सीटों पर जमे रहे और मोबाइल कैमरे में धोनी की तस्वीर कैद करने का इंतजार करते रहे। भीड़ का आलम यह था कि शुरुआत में दर्शकों के लिए केवल बिग सी खोला गया था, लेकिन बढ़ती संख्या को देखते हुए बिग डी भी खोलना पड़ा। बाद में स्टेडियम के अन्य हिस्से भी दर्शकों के लिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और भी विंग खोल दिए गए। बच्चों में क्रिकेट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चे लगातार तालियां बजाकर नारे लगाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। और बातें करेंगे अब फुटबॉल की। न्यूयॉर्क स्टेडियम के ऊपर ड्रोन की आवाज़ प्रशंसकों के लिए परेशानी का सबब हो सकती है, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियां लंबे समय से इन विमानों को बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार के तौर पर देखती रही है। फुटबॉल विश्व कप शुरू होने वाला है, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 11 अमेरिकी शहरों में होने वाले 78 मुकाबलों के दौरान स्टेडियम के ऊपर या पास ड्रोन उड़ाने के लिए शून्य सहिष्णुता नीति है। अधिकारियों ने सुपर बाउल और दूसरे बड़े कार्यक्रमों के दौरान इस्तेमाल होने वाले ड्रोन रोधी उपायों को बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अक्षम करने या उन्हें मार गिराने के लिए अधिक हथियार दिए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की आयुक्त जेसिका टिस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण का मैदान बन गया है और अगर कोई खतरा है तो मुझे रात में सोने नहीं देता। तो यह ड्रोन है जो कांग्रेस के राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिसंबर में किसी खतरनाक ड्रोन को नियंत्रित करने या जरूरत पड़ने पर उसे मार गिराने की हरी झंडी दी है। फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। कागज पर मेक्सिको की टीम अधिक मजबूत नजर आती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका उलटफेर करने का क्षमता रखता है। मेक्सिको की सबसे बड़ी ताकत उसके अनुभवी और आक्रामक खिलाड़ी है। स्ट्राइक राउल जिमेनेस और कैप्टन एडरसन अल्वारेज की टीम की उम्मीदें टिकी हुई है। वही एलेविस्का वेगा भी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की नज़रें कप्तान, गोलकीपर रोनवेन विलियम्स, मिडफील्डर्स टोबोहो मोकोएना और स्ट्राइकर लाइल फोस्टर पर होगी। फोस्टर यूरोपियन फुटबॉल का अनुभव रखते हैं, जबकि मोकोएना में टीम पूरी धुरी माने जाने जाते हैं। युवा खिलाड़ी रेले बोहिले मोको कैप की विपक्षी रक्षा पंक्ति के लिए खतरा बन सकते हैं। घरेलू मैदान दर्शकों का समर्थन और अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण मेक्सिको की जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि विश्व कप के उद्घाटन मैचों में दबाव हमेशा अधिक रहता है और दक्षिण अफ्रीका इस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक भी सकता है।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार परामू। बातें करेंगे कुछ विज्ञान जगत की। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को यह सिखाया कि वायरस के बदलते स्वरूपों के सामने पारंपरिक टीकों की सीमाएं क्या हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की मदद से एक ऐसा नया टीका विकसित किया है जिसका मुख्य घटक पूरी तरह AI द्वारा डिजाइन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टीके का पहली बार मनुष्य पर परीक्षण किया गया और शुरुआती नतीजे उत्साहजनक माने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का उद्देश्य ऐसा ब्रांड स्पेक्ट्रम या सार्वभौमिक टीका विकसित करना है जो किसी एक वायरस या उसके किसी विशेष स्वरूप तक सीमित न रहे। यह टीका कोरोना वायरस परिवार के सभी ज्ञात स्वरूपों के साथ साथ उस चमगादड़ वायरसों से भी सुरक्षा देने की क्षमता रखता है जो भविष्य में इंसानों में फैलकर नई महामारी का कारण बन सकते हैं। पारंपरिक टीके किसी विशेष वायरस की पहचान करना सिखाते हैं, लेकिन वायरस लगातार म्यूटेट होते रहते हैं। इसी वजह से फ्लू के टीके हर साल बदलने पड़ते हैं और कोविड-19 वैक्सीन को भी कई बार अपडेट करना भी पड़ा। नई तकनीक में AI ने हजारों संबंधित वायरसों के अनुवांशिक डेटा का विश्लेषण कर ऐसे हिस्सों की पहचान की है जो लगभग सभी स्वरूपों में समान रखते हैं, और वैज्ञानिकों ने इन्हें स्थिर हिस्सों को टीके का आधार बनाया है। कैम्ब्रिज टीम ने यह प्रयोग सर्वे क्वायरस परिवार पर किया जिसमें सार्स कोविड-19 और कई पशु कोरोना वायरस शामिल हैं। मानव परीक्षण में यह टीका सुरक्षित पाया गया है। इसमें ऐसी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता दिखती है जो विभिन्न प्रकार के सर्वे क्वायरस को पहचान सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उसी मध्यम स्तर की रही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सुरक्षा कितने समय तक बनी रहेगी और भविष्य में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी या नहीं। वास्तविक परिस्थितियों में संक्रमण रोकने की इसकी क्षमता जानने के लिए बड़े पैमाने पर क्लिनिकल प्रशिक्षण आवश्यक होंगे। इसके बावजूद विशेषज्ञ इसे भविष्य की महामारी के खिलाफ वैश्विक तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मान रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहर पलामू, मैं हूँ संजय सिन्हा। बातें करेंगे कुछ स्थानीय खबरों पर, चर्चा डालते हैं। मंगलवार की सुबह थाना क्षेत्र के कादल गांव के टूटू बैठा एवं भूपेंद्र रजवार के दो नाबालिग बच्चों को मोहम्मदगंज पुलिस ने 8 घंटे में बरामद कर लिया है। नाबालिग से आवश्यक पूछताछ के बाद बुधवार को पुलिस ने परिजनों को सुदृढ़ कर दिया है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की सुबह दोनों बच्चे घर से निकले, देर शाम तक नहीं लौटने पर रात्रि करीब 9 बजे परिजन थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया

कि सूचना मिलने के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को गढ़वा जिला के कांडी थाना क्षेत्र के मोखापी गांव स्थित ईंट भट्ठे के पास से बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जन समाधान कार्यक्रम हुआ। डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से डीसी साहब को अवगत कराया। मेदिनीनगर शहरी थाना क्षेत्र हमीदगंज मोहल्ला की विधवा महिला माया कुमारी सिन्हा ने डीसी को आबिती सुनाई। उसने डीसी को बताया कि वर्ष 2011 में कोरोना के कारण पति का निधन हो गया था। परिवार में अब कोई कमाऊ नहीं है, वह आर्थिक परेशानी से जूझ रही है। बताया कि विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कई बार आवेदन जमा किया, लेकिन अभी तक आवेदन स्वीकृत नहीं हो सका। डीसी ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को तत्काल पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। माया कुमारी सिन्हा की विधवा पेंशन ऑन स्पॉट स्वीकृत किया गया। डीसी ने महिला को पेंशन स्वीकृति पत्र भी सौंप दिया। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के शिवा बिगहा गांव में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और आभूषण सहित करीब 1,00,000 रुपए की संपत्ति चोरी कर ली है। इस संबंध में पीड़िता राजकुमार पासवान ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भुक्तभोगी ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व घर में ताला बंद कर हरिहरगंज बेटी के घर गया था। वापस लौटने पर देखा कि घर के सभी कमरे का ताला टूटा पड़ा है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। घर में एक बक्सा में रखे नकद 10,000 रुपये, चांदी का पायल, सोने का 2 आभूषण चोरी हुआ है। पुलिस ने लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छतरपुर नगर पंचायत बोर्ड की बैठक बुधवार को अध्यक्ष अरविंद गुप्ता की अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय में संपन्न हुई। शहर को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के निर्माण और मंदिया नदी के संरक्षण के लिए मंदिया रिवर फ्रंट परियोजना को मंजूरी दी गई। जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए सभी 16 वार्डों के वार्ड विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चौक चौराहे पर CCTV कैमरे लगाने की योजना भी स्वीकृति की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने और अनैतिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नगर अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी स्वीकृत योजनाओं पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू, और बातें करेंगे आज की यानी इतिहास क्या कहता है 11 जून का। 11 जून 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में बिखरी गई थी। 2003 में कोर्निकोवा महिला टेनिस की सबसे सुंदर खिलाड़ी घोषित की गई थी। 2006 में नेपाली संसद ने आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त किया। 2007 की बातें करें तो फिजी के अबदस्त प्रधानमंत्री लार्सेनिया करासे की राजधानी सुवा में प्रवेश की इजाज़त दी गई थी। हम उन्हें याद कर ले जिनका जन्म आज हुआ था। 1897 में राम प्रसाद बिस्मिल, महान स्वतंत्रता सेनानी। 1889 में मानसी जोशी, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1948 में भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज ही है। शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी भारत के भूतपूर्व 17वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इनका जन्म 1947 में हुआ था। पाल रत्न स्वामी तमिलनाडु भारतीय उत्प्रेरक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म आज के दिन 1942 में हुआ। कनक रेले प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, इनका भी जन्म आज के दिन हुआ था।

हम उन्हें भी याद कर लें जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। 2021 में सिद्धिलिंगैया कन्नड़ भाषा में लिखने वाले एक भारतीय कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता थे। इनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 1997 में मिहिर सेन भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे। इनका निधन आज ही के दिन 1997 में हुआ था। 1924 में वासुदेव बामन शास्त्री खर्रे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार, कवि और नाटककार थे। इनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 1970 में लीला नाग प्रसिद्ध बंगाली पत्रकार और महिला क्रांतिकारी थे। इनका निधन आज ही के दिन 11 जून को हुआ था।

0: श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का जोहार पलामू कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: जोहार पलामू।

0: बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
0: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
0: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन।

0: गहरा पीला हो जाता है
1: जी।
0: या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार
1: जी।
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?

0: करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी,
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी

निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने

0: के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,
4: भाई घर के पास लगा था मेला,
3: उसमें आया चाट।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 103 मेगाहर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, दिन के 10 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम
1: के साथ। मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी, जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल

0: Rainfall conditions are also expected during the day over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, coastal Andhra Pradesh and Karnataka, Kanjatik, West Bengal, Konkan and Goa, Tamil Nadu and Northeast India. The world's biggest football tournament, 2026 FIFA World Cup, begins today and will run through July 19 across the United States, Canada and Mexico. And that is the end of this news bulletin.
1: इनकार की एक भाषा होती है वो भी आपको ऊर्जा देती है तो इनकार का पत्र इनकार की भाषा वो भी कैसे संस्कार बनती है वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था
2: जी क्या बात है. हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी. जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक. क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर.
1: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे. और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी और ये यही आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी. तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं. तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है. बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है. बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है. तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया. उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ. लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना. नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें. तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे. बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी. उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी. आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है. लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन चलेगा,
2: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
1: चलेगी. तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं. लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए. वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा. सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है. और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते.
2: जी जी,
1: वो एक गवैया बन जाए.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात.
2: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए. यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं. तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया. खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा. तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं. और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, में आप मुखिया की तरह काम करते हैं. यहां हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की.
1: तीन लाइनों में बात कहता हूं कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं.
2: अच्छा.
1: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी. तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही. जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी तो उसमें एक कहानी छपी. मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक.
2: अच्छा.
1: शिवा मयंक केयर ऑफ

0: प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई, तो
1: हाँ
0: उसका 50 रुपये, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो
1: हाँ
0: उसका 50 रुपये का मनी ऑर्डर आया।
1: हाँ
0: तो उसने कहा कि शिवमैन कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूं। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मैंग, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक ओर
0: हाँ,
1: देख
0: जो
1: रहे हैं।
0: कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ, तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10 15, 10 15, 10 15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है, तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रूमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी।
1: जी
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रहीं छपती रहीं। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी, तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा, तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं। फिर बाद की
1: क्या
0: जितनी कविताएं थी
1: बात
0: वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी।
0: जी,
1: तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता,
1: दो लाइन सुनाइए
0: एक
1: हमें।
0: कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूं, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के वे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी,
1: जी
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली
1: ओ
0: और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूं, और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का
1: बिल्कुल
0: सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया।
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी।
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSC Part 1 में रहा हूँगा तब मैंने
1: जी
0: वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है,
1: जी आप अगर सुनाए हमारे श्रोताओं को
0: हाँ,
1: तो 4 लाइन।
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है,

0: की अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे चार नहीं हैं, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो,
1: वाह
0: अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह
0: बहना का
1: शेष कुशल।
0: संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है,
0: आखिरी
1: बहुत।
0: बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं,
1: वाह
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, कि दुष्यंत भी उसी शहर के थे। तो
0: जी, दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साय में धूप।
0: मशहूर
1: तो
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था, तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी, व्यंग्य में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग्य नहीं
0: अनकहा
1: उत्पन्न होता है,
0: अनकहा
1: तो
0: कुछ
1: अनकहा।
0: अनकहा।
1: तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए,
0: जी
1: तुमने पाया हमने खोया। अब
0: जी
1: अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब ये जो खूबसूरती थी, इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हम
0: जी
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी जी
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस्ट बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। गागर में सागर
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया,
0: जी
1: सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए,
0: जी
1: उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े। नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक
1: हाँ
0: जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनूदित हुआ, इसके
1: जी,
0: बारे में बताइए, इसकी
1: देखिए
0: क्या
1: नाटक
0: कहानी है।
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय

0: प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
1: जनसत्ता के संपादक थे उस
0: हाँ, तो
1: समय
0: मैं
1: जी।
0: जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहाँ शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
1: जी।
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी।
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े
1: जी
0: छोटे लोग थे,
1: जी
0: एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था, कि
1: अच्छा
0: मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूं कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो,
1: हाँ बिल्कुल, ये वो
0: इसका
1: जुमला
0: मतलब कि
1: है।
0: दूसरा आदमी
1: हाँ
0: उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है,
1: जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है,
1: जी
0: नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया,
1: हाँ
0: और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा,
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी,
1: हाँ
0: उनका आशीष था
1: जी।
0: कि नाटक संयोग से, दुर्योग से, जैसे भी था, वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ, इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था,
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो, और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला, बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था, ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और
1: जी।
0: तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे
1: बड़े
0: उन्होंने
1: कलाकार
0: काम
1: जी।
0: में काम
1: कहाँ पर
0: किया,
1: था, किस हॉल में?
0: वेदा कुंभा थिएटर में,
1: अरे वाह,
0: अंधेरी
1: क्या
0: में।
1: बात
0: हाँ
1: है, बहुत सुंदर थिएटर है वो
0: हाँ
1: तो। ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी,
1: हुआ है
0: नौ
1: ना,
0: भाषाओं में अब तक
1: जिसमें
0: ये
1: मराठी में भी है।
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और
1: तो
0: कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है, थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को, और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई
0: बंद बंद
1: नाम,
0: कमरे, अलोई
1: लोई नामकरण
0: जो
1: कैसे कर
0: कबीर की
1: सकते
0: पत्नी
1: किसने?
0: है उनका नाम है।
1: जी बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी
1: जिंदगी।
0: धूम।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफ जई के पिता पे।
0: जी जी
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपके

0: सृजन यात्रा है, ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे? मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है,
1: अच्छा
0: दोनों आंखें खुली रखता हूं तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूं लेकिन पूरा प्रदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी, और मलाला तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है? तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई, उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक
1: जी
0: कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
1: जी
0: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ,
1: क्या बात है, वाह।
0: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह
0: एक लड़की
1: वाह
0: आकाश में लिखती है
1: हाँ
0: ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
1: वाह।
0: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं, और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं
1: जी
0: आपको
1: जी
0: मिलेंगे,
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: न्यूज़ के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज़ रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें
1: जी
0: दर्ज
1: जी
0: है।
1: क्या बात है। अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है, गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता है।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है, 3 दिन, 3 बच्चे,
1: ओ,
0: एक माँ,
1: ओ,
0: एक खबर।
1: ओ, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनाया है अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं,
1: हाँ
0: पान खाएं सैया हमार, वो बजाइए।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है, और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है,
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर है इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहें तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी।
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बनाकर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बनाकर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब
0: जी
1: हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है
1: हाँ,
0: जहां आपका
1: क्योंकि
0: बचपन
1: आपको
0: बीता।
1: लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए,
0: पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके,
0: जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं,
0: जी।
1: वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी। तो यहां भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको,
1: नहीं,
0: या
1: होता
0: यहां
1: था क्या, हम तो उस
0: सकारात्मक
1: समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो वो हमको देखते ही कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम खा कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम
0: आए हैं।
1: लगाने आए हैं,
0: जी
1: हम
0: बिल्कुल,
1: कुछ
0: क्या बात
1: बोने
0: है।
1: आए हैं, हम कुछ
0: सृजन
1: सृजन
0: करने
1: करने
0: आए
1: आए
0: हैं।
1: हैं।
0: जी।
1: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास। तो
0: नजरिया।
1: अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
0: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे, क्या
1: पहली
0: क्या
1: बार
0: थी
1: हम
0: सीढ़ी आपका?
1: देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप मैं स्टिंगर हो गया,
0: जी।
1: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना,
0: जी,
1: उसमें रविंद कालिया जी ने मुझे बुला के रखा, मैं
0: इलाहाबाद के।
1: अकेला ही पीर बावर्ची हिस्ट्री

0: था उनके साथ,
1: जी
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा,
1: जी
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा,
1: क्या
0: न्यूज़
1: बात है।
0: एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो एक टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर हैं कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सकें नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं।
1: जी
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं ये आयोजक के उत्सव होते हैं,
1: जी
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता। वो उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है,
1: जी
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां,
1: जी
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।
1: जी, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए
0: बिल्कुल,
1: आप
0: बहुत जरूरी
1: क्या करना चाहते हैं
0: है। सबसे बड़ी
1: पत्रकारिता
0: चीज
1: का?
0: है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए, एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
1: बिल्कुल
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी, वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: कविता माने कविता नहीं रही।
1: जी जी
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है
1: हाँ
0: तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूं और अपने बच्चे से प्यार करे।
1: जी तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है,
0: बहुत बहुत
1: रचनात्मकता
0: बहुत
1: पर?
0: अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं।
1: जी
0: अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है, और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो
1: जी जी
0: खटमल मच्छर सब आएंगे। ठीक
1: बिल्कुल
0: है, तो
1: सही
0: आप वो
1: बात है।
0: जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
1: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में
0: उसके
1: संदेश
0: लिए
1: दीजिए।
0: सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप

0: ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो
1: जी
0: आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर
0: बहुत
1: से।
0: बहुत धन्यवाद ममता
1: नमस्कार।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: estarán.
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: घर से निकल गया
1: ये दिल दीवाना मचल गया जो ये दिल दीवाना मचल गया
0: मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो कहीं तेरी भी कुछ खता न हो जो ये दिल दीवाना जो ये दिल
2: मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म धर्मपुत्र की ये कव्वाली थी साहिर लुधियानवी के बोल थे एन दत्ता का संगीत था।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है

0: एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज थी देव कोहली के बोल थे आनंद राज, आनंद का संगीत था, ये फिल्म थी हमको तुमसे प्यार है।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

तलाश फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में समीर के बोल, संजीव दर्शन का संगीत था। और यही है श्रोताओं आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: मदन मोहन का स्वरबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की रचना है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को शुरू में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल नहीं।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे
1: नहीं ते
2: नहीं ते

ज्यादा फिल्म का दोगाना आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हे धन जवान।

0: हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling, and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers, including governance, digital public infrastructure, and partnerships, while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, centre and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the centre and states will play a pivotal role in realising the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20 kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Jaisalmer district of Rajasthan during a program held at the Akashvani premises in Jaipur today. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashvani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnav, focusing on strategic infrastructure, highlighted the government's commitment to strengthening communication in border regions. He said today, a major initiative to cover border areas has commenced in Rajasthan. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
3: Today, a new 20 kilowatt, which will cover not only the district but also surrounding regions, about an 80 kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
2: All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sethubalo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigwaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष एसओपी। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली एसएनसीयू और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता, कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन के उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और शासन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा केंद्रित है। इस वर्ष का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। राज्य में जमीन कब्जे के बढ़ते मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने विशेष एसओपी तैयार कर लिया है। अधिवक्ता अत्तानु बैनर्जी ने बताया कि अदालत ने इस एसओपी की समीक्षा करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़े अन्य आवश्यक कदमों के लिए राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है।
1: एक नियम बनाया गया है, वो सरकार के पास अभी भेजा गया है। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। जो प्रस्ताव गया है इसको आपको लागू करना है, नहीं लागू करना है, जो भी निर्णय लेना आप 6 हफ्ते के अंदर लीजिए। कोर्ट ने मुझे भी ये कहा है वो उचित कानूनी रूप से वो सुझाव भी हम 10 दिन के अंदर ये वहाँ पर दे दें।
0: राज्य से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। अब हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकांश हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इसी को देखते हुए बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कैमरा एनफोर्समेंट व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बोकारो के सेक्टर 12 में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह बोकारो पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन और सेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
2: 27 मार्च में इसको चालू कर दिया जाए और NMC का जो नॉर्म्स है उसमें हम लोग मार्च तक अप्लाई कर देंगे और पढ़ाई तो है वो अगस्त से ही शुरू होगा। सबसे पहले मेडिकल जो कॉलेज के अंतर्गत हॉस्पिटल है वो चालू करेंगे मार्च के 27 में और उसके बाद पूरा मेडिकल कॉलेज जो है वो करीब करीब जुलाई अगस्त के आसपास चालू।
0: राज्य सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रांची सदर अस्पताल को नए ई संजीवनी हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य भर के जिला अस्पतालों की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां ऑनलाइन सदर अस्पताल से जोड़ी जाएंगी, जिससे गंभीर नवजातों की विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। श्रावणी मेला से पहले 25 जुलाई को देवघर बासुकीनाथ 4 लेन शुरू हो जाएगा। 999 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 45 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन का 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। NHAI के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद अब निर्माण अंतिम चरण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi

0: और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के लक्ष्मीपुर में गोवर्धन योजना के तहत स्थापित बायोगैस प्लांट से 32 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। महिलाओं द्वारा संचालित इस 1500 किलोग्राम क्षमता वाले प्लांट से लकड़ियों पर निर्भरता खत्म हुई है और खेतों के लिए जैविक खाद भी मिल रही है। परियोजना की सफलता पर मेंटेनेंस मैनेजर नीतीश राज ने कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और LPG की आसमान छूती कीमतों के बीच यह आत्मनिर्भर पहल बेहद कारगर साबित हो रही है।
1: तो और हम लोग पाइप से गैस दिए, गैस देने के बाद सुबह शाम जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पर जो गैस जलता है उस हिसाब से प्रतिदिन हम लोग गैस जलता है सब वहाँ पे, जिसमें अभी LPG की किल्लत होने के कारण हमारे सबसे वरदान साबित होता है गोवर्धन योजना।
0: बोकारो शहर के सिटी थाना क्षेत्र स्थित दूंदीबाद फल मंडी में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 फल दुकानें और कई खटाल पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और BSL की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमशेदपुर पुलिस ने साक्षी बाजार से लापता मासूम बच्ची आफरीन को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची की तलाश के लिए गठित SIT ने 50 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल कर इस सफलता को हासिल किया। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि मामले में पुलिस ने एक निसंतान दंपति को हिरासत में लिया है।
2: 50 से अधिक CCTV देखे गए और उसका जब वो जो ट्रेल था जो उसके द्वारा रास्ता फॉलो किया गया था और ये जो दो व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम। इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है तो ये उसको अपने साथ लेकर चले गए।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 125 अंक बढ़कर 74,109 पर और निफ्टी 29 अंक बढ़कर 23,244 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को आज से राहत मिल सकती है, क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और देवघर समेत कई जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य मानसून अगले 4 दिनों में संताल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। रांची में आयोजित 25वीं झारखंड जूनियर स्टेट शतरंज चैंपियनशिप में बालक वर्ग में तनिष्क कुमार और बालिका वर्ग में कीर्ति कुमारी ने खिताबी जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के शीर्ष 4-4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इसी समारोह में झारखंड अंडर 7 और अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष SOP। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली SNCU और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है अब उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारे आज के कलाकार हैं गिरजा देवी, इनसे सुनिए राग देव गंधार।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी, अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है, मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है, गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता कहते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है, सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है, और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती हैं कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं, इस इबारत में गाँव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं, उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर, और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस तक यादें, भोर पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव, जी हाँ, और गीत भी बताए। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो

प्रिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओ, गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बगीचे से आम चुराकर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है, आपके गांव की, रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा, गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है, बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़न, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है?

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गांव का नाम ठोकर है। मेरे गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बाराहत फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए, आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन, हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने रुला दिया वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ, उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे, जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: किया बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवे का लिख दे।

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था। राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे। यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदूद, जो नर्मदा नदी पर बसा है, वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया, मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता है।

0: भारत अब विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200

0: प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।

0: मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षमत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता की और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। नीति आयोग की बैठक के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया जा रहा है। राज्यों ने भी अपनी आवश्यकताओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया और विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
1: जो देश में विकास और देश की जनता का विश्वास और साथ ही गरीब कल्याण योजना, अगर इसके फेहरिस्त को आप देखेंगे वो लंबी 12 वर्षों में उन्होंने जितना काम किया वो अपने आप में अद्भुत। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इससे स्पष्ट होता है कि ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का वो तपस्या का वो इकाला।
0: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा अब से कुछ देर बाद दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों, झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणब झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों ने चुनावी रणक्षेत्र में डटे रहने का फैसला किया है और किसी ने नाम वापस नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया, लेकिन एक प्रतिष्ठान ने समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं प्रस्तुत किया, इस कारण उसे सील कर दिया गया है।
2: यहाँ पर बहुत सारे विभाग, भवन, बैंकेट हॉल, लॉजिस है, जहाँ पर 2013 की नियमावली के अनुसार सबको निबंधन कराना है, लेकिन यहाँ पर प्राय देखा गया कि बहुत सारे जो ऐसे लॉजिस है, विभाग भवन है, उन्होंने निबंधन नहीं कराया, हम लोगों के लाइसेंस नहीं लिया। सारे कागजात की जांच की जा रही है और जांच करने के उपरांत हम लोग जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वो करेंगे।
0: मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, दुमका, गुड्डा, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एनजीटी के निर्देश पर झारखंड में बालू खनन, भंडारण और परिवहन पर 15 अक्टूबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मॉनसून में नदियों का जलस्तर और बहाव तेज होने से पर्यावरण और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए राज्य के सभी 444 बालू घाटों में उत्खनन और परिवहन बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज हम खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किनका है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: तो इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर, मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे
2: जी। हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है, और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है, कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उसी तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं, और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है,
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गाँव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बेयता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है,
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके दर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहां के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल।

0: सिमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलु गुम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलु गुम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या-क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी
0: और एक
1: बिल्कुल,
0: गीत सुन ले अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और
1: जी
0: ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल,
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतली होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो
1: बिल्कुल,
0: देखने में बड़ा मजा आता
1: और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती है कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल
0: बिल्कुल।
1: रही
0: और अगर आपको लगता है कि
1: हैं।
0: कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल, वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके के
0: जरूरी
1: खेल
0: है।
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने के जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है, इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमें को
0: जी
1: स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका
0: जी
1: विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो, ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं, या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी
1: बिल्कुल,
0: खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है,
0: भाग
1: साइकिल
0: दौड़ते हैं।
1: चलाना है, बहुत
0: हाँ,
1: सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी
1: लुका
0: खेलते
1: छिपी
0: थे,
1: खेलते
0: और बस
1: थे।
0: पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की एक गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं उन
1: बिल्कुल, बहुत
0: पत्थरों
1: से
0: के
1: ऐसे
0: टुकड़ों
1: खेल
0: को।
1: हैं जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और
0: जी
1: जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दीन दुनिया की खबर नहीं रहती है।
0: जी
1: तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर। तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकल कर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर बात
1: बिल्कुल
0: को आगे
1: सुनते हैं।
0: बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि रहती है।
1: है।
0: तो देखियो हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती है कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचे कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही है कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोता जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम
0: बात
1: भी
0: है।
1: अपने
0: और
1: बचपन
0: इस
1: में पहुंच
0: साल
1: जाते हैं।
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल
1: बिल्कुल
0: खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं,
0: जी
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है,
1: सुरक्षित
0: हर
1: नहीं।
0: बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
1: बिल्कुल
0: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत
0: अभी
1: कुछ
0: जैसे बारिश
1: सीख
0: का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है। बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: जरूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता
0: जी
1: है कभी कभी।
0: भाई, बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलो एक गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं, बिल्कुल
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देख
0: उसके बारे में
1: हम लोग
0: समझ
1: साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारी हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद किया है, वो क्या करता है, वो ये करने लगा लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कि कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: तो हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं,
1: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है।
1: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
1: एक
0: ये
1: प्यारा सा
0: प्यारा
1: गीत।
0: सा गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना, और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का
1: दिखावा
0: दिखावा करना।
1: करना
0: जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें। क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है, और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो

0: सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब हम मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है। फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई के श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ, तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और
1: जी,
0: जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना
0: हाँ,
1: कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही, तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत खतरनाक
0: और
1: चीज होती
0: महिलाएं
1: है।
0: हेयर पिन घुमाती
1: हाँ, हेयर
0: जिससे
1: पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं, तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना,
0: जी
1: जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें
1: बल्कि हम
0: हेयर
1: कहेंगे
0: पिन,
1: कि आप
0: इनका तो
1: को
0: कभी
1: बिल्कुल
0: ना
1: आप
0: करें।
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करिए, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली

0: जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ें प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए।
1: जी।
0: और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे
1: जी
0: एक आवाज़ ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुँचाएगा ही।
1: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं
0: बिल्कुल
1: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है,
0: बिल्कुल
1: तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम
0: बिल्कुल।
1: करना
0: और
1: है।
0: सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50, उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए। और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं एक कान में लगाइए। आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास चाहिए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उससे उसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र को भी झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों में से किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कराया जाएगा। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 21 जून को ली जाने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर रांची के 21 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
2: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए, बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी

0: स्कूल से आते थे, वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
1: कभी
0: बिल्कुल
1: घर में बताते हो अपने बच्चों को, या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
0: बिल्कुल होती है मैम, आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के लोग। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, तो चलिए आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
1: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेट में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं।
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम
1: जी। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में, फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है मारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने तो ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर, तो ज्यादातर चलता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारी

0: सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी,
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।

0: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
1: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
0: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी, हर चीज खेली है हमने।
1: अंटी क्या होता है?
0: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं उसको, मारते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
0: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
1: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
0: जी जी, देखिए बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
1: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का, आपके गीत

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है,
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेतीबाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेतीबाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप
1: जी।
0: तो सबसे ज्यादा कितने

0: लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं रेडियो का, बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूँ पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल ही बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है,
0: तो
1: बचपन होता ही है बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था जब जॉब लग

0: गए तो मुझे सरकारी मुहावे से साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने का छोड़ दिया। जानो 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जेब खर्चे के लिए।
1: अच्छा, छोड़ा क्यों
0: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम। उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था। पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
1: अरे वाह,
0: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा। चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
1: क्या
0: आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
1: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
0: जी मैडम।
1: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: झुक गए आसमान का मैडम। कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गए आसमान भी इसको मेरा
1: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात
1: है, कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी,
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकार सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही हैं, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते

0: थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटे पन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी,
0: क्यों
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। युद्ध भारती मैं
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना, कहाँ
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ,
0: से? अच्छा,
1: सोलापुर में बार्शी से।
0: स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम, तुम
0: अरे वाह, क्या बात,
1: कैसे? मुझे
0: हम भी अच्छे
1: युद्ध
0: हैं।
1: भारती के बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सफर अच्छा लगता है आदमी, नई इच्छा तो करे ना तुम कार्यक्रम सुहाना सफर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत गाता
0: और
1: बड़े अच्छे कार्यक्रम है।
0: वो आपका मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: फिल्म का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनना है मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसुंतर बोल रहा हूँ। मैम
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा समय रहते घर पहुँच जाते हो।
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है।
0: हाँ और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बात जिद्दे हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम। बिल्कुल,
0: नमस्ते। अरे, आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम,
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी। कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा, मैं आपसे 2 या 3 लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए, अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए, और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है, कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह की का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था, और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और
0: हाँ।
1: खेलने का मन होता है।
0: लेकिन
1: जी मैम।
0: आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाए।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनितपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेतीबाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और साई का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो साई का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं हमारा साई का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जादव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ तो दीपक जी, और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है
1: जी,
0: आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था आपका?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है मेरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो,
1: जी
0: है ना? कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288। हमारा दूसरा नंबर 02240002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया और विकास तथा जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन आज कोई भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 76 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर, 63,000 रुपये नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत 16 जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, 7 जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: जहाना।
1: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।

अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

0: प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है ये तो। उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी-कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है और कभी-कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह, कितना सुकून है इस प्रेम में।
1: बहुत दूर मुझे जा...

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तराने नए पुराने में। मैं हूं
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगा हर्ट्स पर।

आइए सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दी सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:35 पर आप सुनिएगा युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी और 6:00 हम आपको सुनाएंगे प्रादेशिक समाचार अपने रांची केंद्र से। 6:02 का समय होगा ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा नीम कोटेड यूरिया पर। साथ ही आप एक भेंटवार्ता भी सुनेंगे एक महिला किसान से, जो कि मड़ुआ एवं अन्य मोटे अनाजों की खेती की तैयारी के बारे में बताएंगे और इनसे भेंटवार्ताकार जो हैं केलेमेंसिया केरकट्टा नावाडी रामगढ़ चैनपुर पलामू की हैं और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। कृषकों को संबोधित प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे 6:30 पर। और इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अंतर्वर्ती खेती के अनेकों लाभ पर। साथ ही आप एक महिला किसान से ली गई जो कि खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी, इस विषय पर हम बातें करेंगे ओपोलिना ओया से जो चैनपुर पलामू नावाडी की हैं, इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज की नसीहत में हम आपसे बातें करेंगे जल संरक्षण पर। साथ ही आप आज का मौसम और आज का बाजार भाव भी इसी कार्यक्रम के तहत सुनिएगा।

का और 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। शाम 7:45 आप सुन सकेंगे उजाले की ओर में वार्ता, सत्येंद्र कुमार पांडे की, विषय होगा उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन। 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 8:10 पर आप सुन सकेंगे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम कड़ी संख्या 11। 10:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा और हर रोज की तरह हमारे सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। अभी आप सुन रहे थे असायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है।

ये वाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मनुष्य हम सभी जो हैं भाग दौड़ भरी गला काट प्रतियोगिता के दौर से गुजर रहे हैं। भौतिकता की चकाचौंध के साये में अधिकाधिक धन अर्जन और रौब रुतबा बनाने की अंधी दौड़ में जीवन के शांति, संतुलन, सुकून पीछे छूट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, स्वास्थ्य, शौक, इसमें जो है सो गौण हो रहे हैं। अत्यधिक पेशेवर काम के नाम पर घर परिवार और आंतरिक संतुलन को बिगाड़ती इस कार्यशैली को आधुनिक संस्कृति के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। गौरतलब है दोस्तों कि सोशल मीडिया के जुड़ने के साथ इसके दुष्परिणाम और भी अधिक, यूं कहें तो विकराल होते जा रहे हैं। 1990 और 2000 के दशक में औद्योगिकरण और निजीकरण के दौर में उद्यमशीलता में उछाल के बीच इस विकृत संस्कृति की नींव पड़ी। जब कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली नवाचार और उद्यमशीलता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हुई। दोस्तों, अपने शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संतुलन की कीमत पर अपने पेशेवर जुनून को हासिल करने का चलन एक कार्य संस्कृति के रूप में विकसित और विस्तारित होता है। आज यह जीवन शैली जन जीवन का हिस्सा बन चली है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस में देर तक काम करना, बिना छुट्टी के काम में लगे रहना या सप्ताह अंत में लैपटॉप खोलकर काम में लगे रहना, इस कार्य संस्कृति का हिस्सा है जो आज की पेशेवर आवश्यकता प्रतीत होती है। ये लोग पेशेवर लक्ष्यों को तेजी से, अधिक कुशलता से हासिल करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इनका ऑफिस और घर के बीच का संतुलन नहीं बन पाता और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और तन मन से जुड़ी

तमाम तरह की विसंगतियाँ भी इनके साथ खड़ी हो जाती हैं। तनाव और वर्न आउट इसके स्वाभाविक दुष्परिणाम रहते हैं। दोस्तों, इस काम संस्कृति, कार्य संस्कृति का निद्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बिना उचित विश्राम के काम करने से हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो हृदय संबंधी गंभीर रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, पर्याप्त नींद न लेने, मतलब जितना आपको चाहिए उतना नींद न लेने और अनियमित खान पान से मोटापा बढ़ जाता है, जिसका हृदय पर सच पूछिए तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से हृदय की कार्य प्रणाली जो है प्रभावित होती है। ध्यान न देने पर हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। सच पूछिए दोस्तों, तो विशेषज्ञों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि यदि अनिद्रा को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती है।

दोस्तों, अनिद्रा के कारण रोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी प्रबल हो जाती है। इनमें से आधे से अधिक युवा होते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि लोग नींद के प्रति जागरूक नहीं हैं, वे अपनी जीवन शैली के संदर्भ में लापरवाह हैं, जिससे कि इस तरह की बीमारी बढ़ रही है। लोग अस्पताल तब आते हैं जब अनिद्रा के कारण कोई हादसा हो जाता है। जैसा कि अभी अभी हमने आपसे कहा दोस्तों कि अनिद्रा के कारण रोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी प्रबल हो जाती है, और यह कटु सत्य है कि वर्तमान भाग दौड़ भरे जीवन में देर तक जागना, स्क्रीन का अधिक उपयोग, शारीरिक गतिविधियों की कमी, काम को लेकर तनाव युवाओं के में जीवन का अंग बनते जा रहे हैं। दोस्तों, थकान के बाद भी लगातार काम करते रहने से कुछ समय बाद इसके दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जो संकेत देते हैं कि आप इस विकृति का शिकार हो चुके हैं और समय रहते अब इससे बाहर उबरने के प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं। इस स्थिति में आप बर्न आउट का शिकार भी हो सकते हैं, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक थकान हो जाती है। इसके फलस्वरूप मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और निर्णय लेने में परेशानी होने लगती है। दोस्तों, बिना विश्राम के अनवरत श्रम से उद्विग्नता का खतरा बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपराध बोध का भी शिकार हो सकता है और हार जाने या कुछ खो जाने का भय भी उसे सताने लगता है। यह स्थिति आगे बिगड़ने पर जो है अवसाद का भी कारण बन सकती है। समय रहते बचाव के उपाय कर बहुत सीमा तक इसके खतरों से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, काम के प्रति समर्पित रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है, ज़रूरी है। इसलिए काम के साथ आम जीवन में संतुलन भी साधें, खुद को सफलता की अंधी दौड़ का हिस्सा न बनने दें। ईमानदारी के साथ धन संपत्ति का काम कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति की कीमत पर नहीं, जो आगे चलकर संकट और अवांछनीय परिणाम का कारण बन सकते हैं। इसके प्रभाव से बचने के लिए काम के बीच में दोस्तों छोटे छोटे आराम के क्षण लें। आराम का समय जरूर होना चाहिए। कुछ समय के लिए अपने कार्यस्थल से दूर चले जाएं, टहले और हल्का संगीत सुने। सप्ताह के अंत में अपने परिवारजनों या मित्रों के साथ बाहर घूमने निकले। लंबी छुट्टियां तनाव को कम कर सकती हैं, बर्नआउट को रोक सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, यानी एक्सरसाइज करें। ताज़े फल, सब्जी, मोटे अन्न, प्रोटीन और स्वस्थ वसा का सेवन करें। पर्याप्त जल ले और समय पर भोजन और शयन का क्रम बनाएं। चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। इसके स्थान पर अन्य वैकल्पिक पेय को लिया जा सकता है। स्क्रीन टाइम को कम करें और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। अच्छी पुस्तकों को पढ़ें। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर प्रेरक और स्वस्थ मनोरंजन को स्थान दें। अपनी क्षमता अनुरूप योगासन, प्राणायाम या ध्यान

भी कर सकते हैं, जिसके साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। इस तरह कार्य के साथ अपने स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और मन स्थिति के मध्य संतुलन साधते हुए वर्तमान समय के जीवन के दुष्प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं और दोस्तों इस तरह से एक सफल सुखी जीवन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, सफल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद अब आइए हम सुनते हैं अंजनी कुमार तिवारी की वार्ता। विषय है समग्र शिक्षा अभियान।
1: समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक व्यापक योजना है, जिसे 2018 में प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा को एकीकृत करने के लिए, समानता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर एक किया गया है, ताकि सभी बच्चों को समान समावेशी शिक्षा मिले और बेहतर सीखने के परिणाम मिले, जिसमें पाठ्य पुस्तकें, वर्दी और परिवहन भत्ते जैसे लाभों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT भी शामिल है। समग्र शिक्षा अभियान वास्तव में क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मुख्य उद्देश्य: पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाना, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना, खासकर वंचित और कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने के परिणामों में सुधार करना, शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना, इसकी मुख्य विशेषताएं। एकीकृत योजना, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS और शिक्षक शिक्षा TE एक छत के नीचे लाया गया है। संसाधन TLMS, शिक्षक मैनुअल और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसकी अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान कैसे काम करता है? यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता इसके द्वारा दी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा सभी के लिए समावेशी और सुलभ हो, जिससे सीखने के बेहतर परिणाम मिले। अब स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। यह योजना पूर्व की 3 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE को समाहित करती है। यह पूर्व विद्यालय से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यालय शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना है, और इसका उद्देश्य विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना विद्यालय शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुरूप है। समग्र शिक्षा योजना को नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, भिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 5 वर्षों के लिए जारी रखी गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुशंसाओं को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करना, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, मूल रूप से और मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर देना, छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए समग्र एकीकृत समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति पर बल देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषदों NCERT या राज्य शिक्षा संस्थानों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ और उन्नत बनाना, सुरक्षित संरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपरोक्त गतिविधियों को करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण और वितरण के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। समग्र शिक्षा, यह केंद्र प्रवर्तित व्यापक कार्यक्रम है जो विद्यालय तक सुगम पहुंच तथा बेहतर अधिगम परिणामों के समान अवसर उपलब्ध करवाने व विद्यालयी शिक्षा में सुधार के व्यापक लक्ष्यों को सामने रख करके पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा के स्तर तक को समग्र रूप से समाहित कर शुरू किया गया है। समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा के तीनों योजनाओं को समेकित कर यह योजना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना करती है तथा विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न कक्षा स्तरों में अंतरण दर में सुधार करने और बच्चों को विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के लिए सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता करती है। शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार पूर्व प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करते हुए निम्न लक्ष्यों को इस योजना में प्राप्त किया जाना है। पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने में प्रावधान करना। दूसरा, विद्यालयों में सोशल और जेंडर गैप को कम करना। तीसरा, सभी स्तरों पर समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में सहायक और सहायता करना। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT डाइट के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। सातवां, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना। और आठवां, शिक्षक शिक्षा और प्राथमिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना है।
0: दोस्तों, अभी आपने सुना अंजनी कुमार की वार्ता, विषय था समग्र शिक्षा अभियान। और अब इसी वार्ता के बाद दीवाणी कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम ई वाणी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में नेशनल टास्क फोर्स की बैठक से टीबी मुक्त भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की मदद से वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन आज कोई भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। सिमडेगा जिले के कोलीबेरा थाना क्षेत्र में आज एक चार पहिया वाहन के पेड़ से टकरा जाने से उस पर सवार पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाया जा रहा है। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवाओं और गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और ग्रामीण बंधु, कृषि में कई तरह के खोज निकाले गए हैं और जिसका फायदा हमारे ग्रामीण बंधु को लेना चाहिए, उसी तरह से आज नीम कोटेड यूरिया से संबंधित जानकारी के साथ हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार आपको संतोष भाई और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हम लोग बात करेंगे आज नीम कोटेड यूरिया के बारे में। तो नीम कोटेड यूरिया जो है वह सामान्यतः यूरिया का ही एक संशोधित रूप है जिस पर नीम के तेल का लेप चढ़ाया जाता है,
1: यानी कोटिंग किया जाता है।
0: यानी कोटिंग किया जाता है। यह पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार धीरे धीरे नाइट्रोजन प्रदान करता है और कृषि लागत कम करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। सामान्य यूरिया खेतों में डालने के बाद बहुत जल्दी घुल जाता है, जिससे काफ़ी नाइट्रोजन भाप बनकर या पानी में बहकर बर्बाद हो जाता है। नीम का तेल एक नाइट्रिफिकेशन अवरोधक की तरह काम करता है जो यूरिया को मिट्टी में धीरे धीरे घुलने देता है, जिससे नाइट्रोजन का उपयोग लंबे समय तक होता है।
1: जी हाँ किसान बंधु, हम आपको यह भी बताते चलें ग्रामीण भाई बहन कि नीम कोटेड यूरिया के कई फायदे हैं। कम लागत, ज़्यादा उपज, यह सामान्य यूरिया की तुलना में 5 से 10% तक कम लगता है और फसल की पैदावार में 10 से 15% तक की वृद्धि पाई जाती है। मिट्टी की सेहत में सुधार की अगर बात की जाए तो यह मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब नहीं होने देता और पर्यावरण के अनुकूल होता है। नीम की महक के कारण इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों जैसे रासायनिक उद्योग में भी इन्हें उपयोग में लाया जाता है, जिससे कालाबाजारी और जमाखोरी पर भी रोक लगती है। कीट नियंत्रण की अगर बात की जाए तो नीम के प्राकृतिक गुणों के कारण यह दीमक और अन्य कीड़ों से फसलों कि कुछ हद तक रक्षा करता है। किसान भाई, और अब बातें होंगी अंतर्वर्ती खेती की।
0: किसान भाई, अंतर्वर्ती खेती, सह फसली खेती या इंटरक्रॉपिंग, इसका अर्थ है एक ही खेत में एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना। यह किसानों के लिए आय बढ़ाने, संसाधनों का पूरा उपयोग करने और खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखने का एक बेहतरीन और आधुनिक तरीका है। अंतर्वर्ती खेती के अगर हम लाभ की बात करें किसान भाई, तो इसके लिए अतिरिक्त आय और सुरक्षा, एक ही जमीन और समय में मुख्य फसल के साथ दूसरी फसल लेने से कुल उपज और मुनाफा बढ़ जाता है। मुख्य फसल खराब होने की स्थिति में दूसरी फसल से नुकसान की भरपाई हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, मूंग को मुख्य फसल के साथ बोने से ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में जमा कर देती है। इससे खेत की प्राकृतिक शक्ति बढ़ती है और रासायनिक खादों का खर्च कम होता है। प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण कुछ खास पौधों की सुगंध कीटों को दूर कर रखती है और उन्हें खेत में ही फंसा लेती है।
1: जी हाँ किसान बंधु, अगर इस प्रकार देखा जाए तो अनेकों फायदे हैं और इससे फसलों में बीमारियों का खतरा भी कम पाया जाता है। किसान भाई बहन, संसाधनों का सही उपयोग, ये सबसे मूल शब्द हैं जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। खेत में धूप, पानी और खाली जगह का पूरा और सही इस्तेमाल इससे होता है। गहरी जड़ वाली फसलें और उथली जड़ वाली फसलें एक साथ मिलकर मिट्टी से पोषक तत्व और पानी साझा करती हैं। मिट्टी और कटाव को रुकना अंतर्वर्ती खेती में मुख्य लाभ है। एक से ज़्यादा फसलें होने के कारण खेत पूरी तरह ढका रहता है, जिससे तेज हवा या पानी से मिट्टी का कटाव रुकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्वर्ती खेती के अनेकों फायदे हैं। और अब बातें लत्तर वर्गीय सब्जियों की किस्मों की, जो हमारे किसान भाई बरसात के मौसम में अब लगाने की तैयारी में जुट चुके हैं।
0: किसान भाई, बरसात का जो मौसम है, जुलाई से सितंबर में उगाई जाने वाली लत्तर या बेल वाली सब्जियों की पैदावार और मांग बाजार में बहुत अच्छी रहती है। प्रमुख लत्तर वर्गीय बरसाती सब्जियों और उनकी उन्नत किस्मों का हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लौकी, इसके लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन, यह बरसाती मौसम के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। इसके फल हल्के हरे और बेलनाकार होते हैं। पूसा संदेश, यह भी अधिक पैदावार देने वाली एक लोकप्रिय किस्म है। पंजाब कोमल, इस किस्म में रोगों के प्रति सहनशीलता अच्छी होती है। अगर हम करेला की बात करें किसान भाई

0: ई तो पूसा दो मौसमी बरसात के मौसम में उगाने के लिए यह बेहतरीन किस्म है, पूसा दो मौसमी। कोयम्बटूर ग्रीन, यह गहरे हरे रंग के मध्यम आकार के फलों वाली उच्च उपज देने वाली किस्म है। अर्का हरित, इसके फल गहरे हरे और आकर्षक होते हैं।
1: जी हाँ ग्रामीण बंधु, अगर तोरई और झींगी की बात की जाए, चूँकि हमारे बहुत से किसान बंधु हैं जो झींगी की खेती करते हैं, और इसमें पूसा नूतन ख्याल रखिएगा, यह बरसात में जल्दी तैयार होने वाली और अधिक उपज देने वाली किस्म है। पूसा सुप्रिया तोरई की यह किस्म काफ़ी लोकप्रिय है और इससे फल जो होते हैं इसके वो लंबे होते हैं। अगर कद्दू की बात की जाए यानी काशी फल की बात की जाए, तो पूसा विकास बरसाती मौसम में उगाने के लिए यह प्रमुख किस्म है और इसके फल गोल और गुदा पीले रंग का होता है। अर्का सूर्य, यह संकर किस्म है जो भारी बारिश को सहने की काफ़ी क्षमता है, इसमें सक्षम है ये उसके लिए।
0: खीरा के लिए पूसा उदय, बरसात में खीरे की यह किस्म बहुत अच्छी पैदावार देती है। यह गहरे हरे रंग के कुरकुरे और सीधे फलों वाली किस्म है।
1: और इस प्रकार हमारे ग्रामीण बंधु इन उन्नत किस्मों की खेती करके भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, बशर्ते हमारे ग्रामीण बंधु से बराबर ये अनुरोध हम करते हैं कि आप जब भी खेती करें तो जैविक खेती अपनाएं किसान बंधु, उसके बाद देखिए मुंह मांगा दाम आपको बाजार में मिलेगा। और ये तो बातें हो गई सब्जियों की किस्में की, और कार्यक्रम में अब आइए हम सुनते हैं एक
0: लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, महिला किसान से भेंट।
1: तो से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें होंगी प्राकृतिक खेती की। जहाँ किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के साथ साथ ग्रामीण भाई बहन हम मड़ुआ की भी बातें करेंगे, और मड़ुआ की खेती आपको खास करके पलामू जिले के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां जो पारंपरिक खेती से की जाती है, और विशेषकर मड़ुआ को लोग बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और उन गांवों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के नवाडी गांव की एक महिला है हमारे साथ। ये बृहद पैमाने पर मड़ुआ की खेती करती हैं, पारंपरिक खेती करती हैं, बहुत अच्छी तरह से फसलों का उत्पादन करती हैं। आप हैं कलमेंसिया करकट्टा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अभी आप क्या कर रही हैं कलमेंसिया करकट्टा?
2: अभी तो मतलब मैं खेती गृहस्थी में ही मैं लगी हुई हूँ अभी। कुछ मतलब कि कुछ संस्था से मैं करती हूँ, नवजागरण ग्रामीण विकास की समिति से, तो किसान में भी हम लोग जुड़े हुए हैं, और चियाकी की बिकी से भी जुड़े हुए हैं, उधर से भी कुछ सहयोग मिलती है, और हमारे गाँव तक हम लोग पहुँचाते हैं, गाँव वालों को हम लोग के बिकी तक पहुँचाते हैं। देसी खेती के बारे में भी ज़्यादातर हम लोग मड़ुआ का ही मतलब मोटा अनाज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं गांव में।
1: अच्छा।
2: अभी इस बार 2025 में ज़्यादातर मड़ुआ खेती हुई है, और अच्छा हुई है इस बार फसल मड़ुआ, बहुत अच्छा
1: 2025 में अच्छा उत्पादन किया है।
2: जी अच्छा उत्पन्न हुआ है।
1: अच्छा, तो मड़ुआ में भी प्रभेद होता है इधर?
2: जी हाँ सर, होता
1: जैसे?
2: है जैसे कि मड़ुआ इस मतलब कि मोटा अनाज होने के चलते बहुत मतलब कि आगे से भी मतलब सरकार, भारत सरकार भी मांग रही है मोटा अनाज के बारे में। अभी घर में अपने आप में मैं लगाई हूँ, लगभग मतलब कि 2 क्विंटल मतलब कि अनाज पैदा हुआ है।
1: मैंने कौन प्रभेद था
2: वो मतलब कि देसी खेती मतलब ग्रामीण वाला ही था।
1: अच्छा, अच्छा
2: जी
1: अच्छा।
2: देसी वाला।
1: तो इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करती हैं आप?
2: खेत की तैयारी इस प्रकार हम लोग करते हैं, उसको आजकल साफ करते हैं, उसमें मतलब कि गोबर खाद उसी को मतलब कि जला करके फिर जो भी है रटान उटान जो भी है उसको मतलब कि खाद बन जाती है, उसको बाद जलाने के बाद वो खेत तैयार करने के बाद हम लोग गाछी लगाते हैं।
1: खेत तैयार कैसे करती हैं? जैसे उसमें हल वगैरह चला देती हैं, क्या करती हैं? अभी तो जैसे गर्मी का समय है, अभी लोग गहरी जुताई भी खेतों की करते हैं।
2: जी उसको साफ करते हैं अच्छा से, जुताई कोड़ाई उसके बाद उसमें कुछ
1: कितना जुताई करवाती हैं लगभग? पहले
2: तो 2-3 बार मतलब की जुताई होती है, उसको बढ़िया से साफ करने के बाद मतलब गुलगुलाते हैं।
1: अच्छा।
2: जोत करके उसके बाद अच्छा से मतलब की तैयार हो जाती है, उसके बाद तब बीज हम लोग मतलब की गाछी लगाते हैं, मड़ुआ का गाछी लगा।

0: अच्छा, तो नर्सरी तैयार करती हैं अलग?
1: जी हाँ, अलग करते हैं।
0: अच्छा, अलग नर्सरी तैयार कर लेती हैं, उसके बाद खेतों में उसको लगा देती हैं।
1: जी,
0: ओ, तो ऐसे छिटवा विधि नहीं?
1: छिटवा विधि नहीं, हम लोग गाछी लगा करके बाद में हम लोग उसको तैयार, गाछी तैयार होने के बाद हम लोग बाद में बारिश होती है उस टाइम हम लोग मतलब फिर जोताई कोड़ाई करके उसमें हम लोग लगाते हैं।
0: अच्छा, तो बारिश जैसे नर्सरी जहाँ पर आप पौधा तैयार करती हैं,
1: जी
0: तो कब शुरू करती हैं बिचड़े जो लगाती हैं? तो
1: हम लोग अभी से मतलब लगे हुए हैं, कहाँ किस तरीका से लगाना है तो खेत हम लोग तैयार कर रहे
0: चुनाव
1: हैं,
0: कर रही
1: अभी
0: हैं।
1: चुनाव कर रहे हैं, अब वहाँ से भी साफ कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: जी, गर्मी मतलब कि बरसात होने के पहले हम लोग तैयार कर देते हैं, उसके बाद जला करके जो भी है गद खाद मतलब कि गोबर खाद उसी से हम लोग मतलब कि जला करके हम लोग तैयार करते हैं खाद, उसके बाद हम लोग बाद में जोताई कोड़ाई करके तैयार करते हैं, उसके बाद बारिश होगी शुरू वाला बारिश में ही हम लोग गाछी लगाते हैं मड़ुआ को।
0: इसको नर्सरी में पहले तैयार कर लेती हैं, और
1: जी
0: नर्सरी में तैयारी जब करती हैं पौधों की, बिचड़ा उगाती हैं, तो क्या क्या सावधानियां बरतती हैं उसमें?
1: उसमें मतलब कि सावधानियाँ तो यही है कि बचाना पड़ेगा पशु से, मतलब कि बकरी जो भी पशु हैं उन लोग से, और उसके बाद हम लोग अपना जो भी मतलब कि बचाना इस प्रकार होती है हम लोग घोरान लगाते हैं इस प्रकार से, उसके बाद बचाते हैं देखभाल करते हैं, उसके बाद तैयार होती है तो छोटा छोटा में ज़्यादातर तो छोटा पौधा होने से ही उसमें बहुत अच्छा मतलब कि उसमें बीज भी देगा और उसका फल भी देगा।
0: कितना छोटा में लगा देती हैं, क्यारी में बो
1: एक
0: देती हैं?
1: बीता लगभग में,
0: अच्छा, एक
1: एक
0: बीता
1: बीता
0: होना
1: बढ़ने
0: चाहिए।
1: देते हैं उसके बाद लगाते हैं।
0: अच्छा, अब वहाँ से एक एक करके लगा देते
1: जी,
0: हैं।
1: एक एक करके लगाते हैं।
0: सिंचाई वगैरह की इसमें करनी पड़ती है?
1: इसमें सिंचाई वगैरह नहीं करना पड़ता है, इसमें स्वयं मतलब कि ऊपर की बारिश होने से ही हम लोग लगाते हैं, और इसमें कुछ मतलब कि खाद नहीं लगाते हैं, सिर्फ
0: अच्छा,
1: लगा देने से ही इसका मतलब कि हो जाता है, पैदावार हो जाता।
0: मतलब पानी होने सब प्रकृति पर
1: जी,
0: निर्भर है, जैसे
1: प्रकृति पर
0: कोई
1: निर्भर रहते
0: बस
1: हैं।
0: उसी से जो पटवन हो गया सो हो गया।
1: जी,
0: अच्छा, खाद वगैरह?
1: खाद वगैरह भी इसमें नहीं चाहिए,
0: अच्छा
1: जो भी मतलब कि ऐसा मतलब कि कंकड़ पत्थर में तो और इसका अच्छा मतलब कि पैदा होता है ज़्यादा।
0: अच्छा जितना ऊसर जमीन हो, जितना ये हो, उतना ही बढ़िया पैदावार देगा,
1: जी
0: जरूरी नहीं है कि बहुत उपजाऊ होना चाहिए।
1: नहीं,
0: अच्छा
1: आसान खेती है इसको, मतलब कि जो किसान भी जो किसान भाई बहन होते हैं उन लोग को भी मतलब कि मड़ुआ का खेती आसान तरीका से है, उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है कि वही जो खाद तैयार करके जो गाछी लगाते समय नर्सरी को अच्छा से तैयार करके उसमें गाछी लगा दीजिए, उसके बाद एक बीता होने के बाद अब मतलब कि उसको रोपिए, एक एक एक एक मतलब कि एक एक ठोकर के रोपिए, उसी का मतलब कि अच्छा मैंने पहले से जो पहले से मतलब गाछी लगा हुआ है वो खेती अच्छा मतलब कि हो जाता है।
0: अच्छा, मड़ुआ के अतिरिक्त और कौन सी खेत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो आप लोग करती हैं?
1: मोटा अनाज में तो ऐसे मकई धान,
0: मकई?
1: जी गोड़ा धान भी आजकल मतलब कि खेत वाला
0: अच्छा,
1: करते हैं।
0: मकई का यहाँ पर तो बृहद पैमाने पर भी करती हैं आप लोग?
1: जी, बराबर ही मतलब बराबर की मात्रा में करते हैं।
0: अच्छा, गर्मा मक्की? मकई
1: नहीं,
0: वो
1: जो
0: खरीफ वाला?
1: जी
0: अच्छा, अब धान कौन, वही खरीफ वाला?
1: खरीफ वाला।
0: हाँ, अब सामा कोदो जो सुनते हैं?
1: जी, सामा कोदो भी लगाते हैं,
0: अच्छा,
1: और उसमें भी है कि पहले के अपेक्षा तो अभी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन हम लोग जागरूकता के लिए हम लोग मतलब ग्रामीणों से लगे हुए हैं और केबीके से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी हम लोग को मतलब कि प्रशिक्षण देते रहते हैं, और उसके बाद नव जागरण हम लोग का संस्था है उससे भी हम लोग को मतलब उधर से भी शिक्षा मिलते रहती है, इसको हम लोग मतलब कि धीरे धीरे से ख़त्म हो जा रहा है इसीलिए हम लोग जागरूकता के लिए हम लोग हैं।
0: अच्छा, ये आप अगल बगल के जो गांव हैं और आपके जो और भी कृषक हैं, तो उन लोग को आप लोग बताती हैं कि?
1: जी हाँ, बताते हैं और लेके भी आते हैं केबीके में, और वहाँ से भी मतलब कुछ कुछ अनाज मतलब कि मिलता है बीज बोने के
0: जैसे
1: लिए,
0: जैसे वहाँ क्या क्या मिलता है?
1: जैसे वहाँ मतलब कि मिला था मड़ुआ भी मिला था, मूंग भी मिला था, उसके बाद फिर अरहर मिला था और सरसों मिला था, और वहाँ का जो बीज था बहुत अच्छा से मतलब खेती हुई, बहुत
0: अच्छा।
1: अच्छा पैदावार हुआ इस बार।
0: तो सरसों लगाई थी?
1: जी हाँ, लगाए थे सर।
0: अब मड़ुआ कितना में लगाती हैं आप?
1: इस बार तो लगभग 1 एकड़ लगभग में मैं लगाई थी।
0: वाह, 1 एकड़ में मड़ुआ लगाई थी।
1: जी,
0: अब उत्पादन कितना प्राप्त हो गया था?
1: अभी तो जब उत्पादन तो मतलब वही आधा तो बेचते जा रहे हैं, लगभग 2 क्विंटल घर में वैसा है।
0: अभी भी है?
1: जी हाँ
0: तो बिक्री के लिए?
1: जी, बिक्री करेंगे जो जितना हम लोग खाएंगे घर में
0: अच्छा,
1: यूज
0: ऐसा भी
1: करेंगे।
0: होता है कि जैसे पुराना मड़ुआ मान लिए है, ठीक ना,
1: जी
0: तो इसका सेवन मतलब अगले साल कर सकते हैं लोग?
1: जी हाँ, कर सकते हैं सर,
0: कोई दिक्कत नहीं ना?
1: दिक्कत नहीं है।
0: मैंने पौष्टिकता इसका खराब हो या किसी तरह की
1: नहीं
0: बात हो
1: नहीं
0: ऐसा
1: खराब।
0: कुछ नहीं।
1: हाँ, 2 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका थोड़ा सा मतलब कि खाने में सीठा हो जाता है,
0: अच्छा
1: 2 साल से ज़्यादा हो जाता है तब
0: अच्छा अब अभी जैसे पिछले साल का उत्पादन है तो अभी चलेगा,
1: चलेगा।
0: वो अगले साल भी चलेगा इसका
1: जी
0: मतलब।
1: चलेगा सर।
0: ये तो मड़ुआ की बात हो गई। सामा कोदो के लिए तो पानी चाहिए आपको,
1: जी हाँ, पानी चाहिए।
0: तो पानी यहाँ व्यवस्था है बढ़िया?
1: बढ़िया व्यवस्था नहीं है पानी का, सिंचाई का, इसीलिए वहाँ मतलब कि सब लोग ऊपर का प्राकृतिक देन मतलब कि बारिश होती है तब मतलब कि खेती होती तो है, लेकिन जहाँ तहाँ, पहले की अपेक्षा नहीं हो तो मतलब कि रहा है, कहाँ कहाँ पर मतलब कि पुराना ढंग की खेती भी हम लोग प्रचार करते रहते हैं, इसीलिए बहुत जगह मतलब कि खेती हो रहा है।
0: यहाँ से बेचने कहाँ जाती हैं आप लोग?
1: हम लोग बेचने के लिए गांव में आते हैं, नहीं तो केबीकी के द्वारा संपर्क होती है, वहां भी मांगते हैं।
0: वही लोग मड़ुआ खरीद लेते हैं।
1: जी, नहीं तो गांव में भी
0: और
1: इसको
0: सच अगर बोला जाए तो अगर आप इसे बाजार लेकर के जाएंगी तो आपको और भी दाम मिल जाएगा।
1: जी मिलेगा ज़्यादा ही दाम वहां से।
0: हाँ, वहाँ आप जो आप बार बार कृषि विज्ञान केंद्र का जो नाम ले रही हैं आप, तो वहाँ से क्या क्या प्रशिक्षण आपको मिलेगा?
1: वहां तो बहुत प्रशिक्षण मिली है, हर
0: जैसे
1: प्रकार के मतलब कि प्रशिक्षण मिलती है, और ग्रामीणों को भी हम लोग लेके आते हैं हर चीज़ में। जैसे सरसों में भी मतलब उसका भी उत्पादन कैसे होती है उसको भी बताए हैं, फिर मक्का में कैसे मतलब कि वो भी लगा, मड़ुआ कैसे लगाना चाहिए वो भी बताते हैं। हर चीज़ का वहाँ मतलब कि पहले तो बीज देने के पहले प्रशिक्षण होती है, उसके बाद उसका मतलब कि नियम सब बताने के बाद ही मतलब कि बीज वितरण होती है वहाँ से।
0: अच्छा, उसका फायदा यहाँ ग्रामीण लोग यहाँ जो नावाडी
1: जी
0: के जो हैं सो लेते हैं।
1: जी
0: आपका
1: बहुत
0: जो
1: खुश
0: घर है
1: हैं।
0: वो कहाँ, मतलब बगल से नदी वगैरह भी बहती है?
1: जी, नदी भी है
0: कौन नदी है?
1: वहाँ पर, थोड़ा सा मतलब कि दूर है हम लोग का गांव के, अगल बगल में तो है, सूरज विधवा बोलते हैं,
0: अच्छा, तो उसी
1: बड़ा
0: नदी से
1: लंबा, वही
0: सिंचाई
1: है।
0: वगैरह भी जरूरत पड़ती
1: हाँ, वहाँ से सिंचाई के लिए हम लोग का मतलब कि नहीं है, लेकिन जो भी अपना थोड़ा थोड़ा मोटर सब है उसी से करते हैं
0: आपके
1: लोग
0: पास
1: अपने।
0: मोटर है?
1: नहीं है सर मोटर, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि कुछ उधर से चापाकल नाल है उससे मतलब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं
0: हो जाता
1: अपना।
0: है।
1: हाँ जी, अपना खाने भर सब्जी सब।
0: अच्छा, सरकार द्वारा ढेर सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं। अभी तो आप बीज वितरण कार्यक्रम का नाम ली, तो आप बीज वगैरह लेती हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, और भी कौन कौन सी योजना का लाभ ली हैं आप?
1: अभी तो फिर मिलने वाला है स्प्रे मशीन और औजार भी मिला था।
0: अच्छा, ये सब मिलते, औजार वगैरह तो
1: जी
0: मिलते रहता
1: जी
0: होगा?
1: मिलते रहता है, और हर चीज़ वहाँ से जो जो जो भी मतलब कि हम लोग को वहाँ से, उधर से आता है, रांची कांके से आता है, तो सर लोग हम लोग को बताते रहते हैं, और हम लोग ग्रामीणों को बताते हैं, और हम लोग के थ्रू से उन लोग को मिलता है, हम लोग दिलवाते हैं।
0: अच्छा, तो इस तरह से मतलब कि खेती बाड़ी वगैरह सब चलते।
1: जी, आदान प्रदान हम लोग का केबीकी से, ग्रामीणों से, ग्रामीण किसानों से हम लोग आदान प्रदान करते हैं।
0: करते रहती हैं।
1: जी,
0: अच्छा, पशुपालन की हम बात आपसे करेंगे, पशुपालन की क्या स्थिति है आपके गांव में?
1: पशुपालन का तो सर अभी मतलब कि अभी जो भी है अपना अपना घर में रखे हैं, बकरी वगैरह है, बकरी गाय हैं, उसके बाद फिर भी जो भी है सुअर पालन भी है, हाँ गांव में तो सब वैसे करते हैं।
0: तो आपके पास कितनी बकरियां हैं?
1: मेरे पास तो बकरियां अभी 10-12 बकरियां हैं।
0: अच्छा, और 10-12 बकरियां मतलब कि अभी दूध दे रही हैं या क्या, मतलब वो बेचने लायक भी हैं, कैसी स्थिति में हैं?
1: अभी तो छोटी छोटी है, दूध तो दे रही है, छोटी छोटी मतलब कि उसका बच्चा है, और उसमें भी मतलब बच्चा लोग भी, आजकल तो गर्मी का दिन है, उन लोग को देखभाल करना पड़ता है।
0: जी
1: गर्मी में तो आजकल मतलब गांव देहात में तो ऐसे छोड़ देते हैं कभी कभी, मतलब कि 12 बजे लगभग में उसके पहले अंदर कर देते हैं थोड़ा सा देखभाल करके।
0: जी जी अच्छा, ये तो हो गई बकरी पालन। पशुधन में जहाँ तक बात आती है गाय की, या फिर आपका आपका जो हल जोतने के लिए जो बैल है, तो
1: जी
0: इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खासकर पशुधन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें गाय जो है, गाय कितनी संख्या में है?
1: मेरा गाय तो ज़्यादा नहीं है सर, 2 ही हैं।
0: अच्छा,
1: जी,
0: और दुधारू है?
1: दुधारू मतलब कि है, लेकिन अभी नहीं है,
0: अच्छा,
1: नया नया ही है।
0: तो यहाँ पर पशुओं में कौन कौन से रोग आपको देखने को मिलते हैं?
1: पशु में तो ऐसे तो ज़्यादातर देहात गांव में तो वही है कि गाय है, और किसानों के लिए तो वही बैल रखे हैं, 2-2 ठो, और ऐसे 2 हल भी चलता है, कभी एक हल भी चलता है, जैसे घर में मतलब कि व्यक्ति के अनुसार ही।
0: अच्छा, मतलब पालन पोषण करती हैं
1: जी, उन लोग के लिए भी एक ठो तो चाहिए देखभाल करने के लिए।
0: अच्छा, पारंपरिक खेती के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई जो हैं जो आज आधुनिक कृषि तकनीक को अपना चुके हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत अधिक लाभ उन्हें होता है, लेकिन पारंपरिक जो हमारी खेती जो बाड़ी जो पहले से चली आ रही है खासकर उसको भी बहुत ज़्यादा महत्व देना पड़ जाता है, क्योंकि पारंपरिक खेती ही नींव है हमारी कृषि व्यवस्था की। तो पारंपरिक खेती को आप कितना बेहतर मानती हैं?
1: हम लोग तो बहुत बेहतर मानते हैं सर, अभी हम लोग मतलब कि उसी में हम लोग निर्भर करते हैं, ग्रामीणों को जो हम लोग संस्था चलाते हैं हम लोग उसी पर हैं, देसी खेती पर ही है।
0: किसान भाई बहन, आप सुन रहे थे एक महिला किसान से मोटे अनाजों की खेती पर, पशुपालन पर की गई बातचीत। महिला कृषक थी क्लेमेंसिया करकट्टा। और ग्रामीण बंधु, अब चूंकि हमारा समय आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए कार्यक्रम खेती बाड़ी में बातें आज बस यहीं तक। दीजिए अब अपने भाई संतोष कुमार
2: और प्रदीप कुमार सिंह को इजाजत।
0: नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेतीबारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित हमारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और ग्रामीण भाइयों, हमेशा की तरह कार्यक्रम में सर्वप्रथम बातें मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की, जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से प्राप्त है। और आपके साथ इनसे संबंधित जानकारी लेकर आए हुए हैं आपके भाई प्रदीप सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: आपको भी मेरा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे किसान भाई की, अभी का जो मौसम चल रहा है उसमें आपको मुख्यतः गर्म और मौसम शुष्क रहेगा, अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना है, कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। फसलों का गिरना, फलों का टूटना, ये सब जारी रहेगा। किसान भाई, खरीफ धान की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा की प्रतीक्षा करें, जबकि सिंचाई की सुविधा वाले किसान खरीफ धान की बुआई के लिए जा सकते हैं। परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई सुबह और शाम के समय करें और तुड़ाई के बाद उसे छाया में रखें। आम, नींबू और केले जैसे फसलों की सिंचाई करें। खरीफ फसल लगाने हेतु खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे का निर्माण करें। फल या लकड़ी के पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई करें। जो किसान भाई अदरक, हल्दी या ओल की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हैं, वे अब इसकी बुआई मेड़ बनाकर ही करें। खरीफ फसल की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी के साथ साथ आवश्यकतानुसार उत्तम बीज का चुनाव करें। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP या वावे

0: 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या कैप्टान 50% या थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से करें। प्रतिष्ठित एजेंसियों दुकानों से एकत्रित ट्राइकोडर्मा जैसे बायो एजेंट फार्मुलेशन का उपयोग बीज उपचार के लिए 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से किया जा सकता है।
1: और किसान भाई बहन, कार्यक्रम में अब हम आपको यह भी बता दें कि बारिश के बाद जल्दी बोई गई सब्जियों में मुरझाने की समस्या होने पर 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव आप कर दीजिए। ग्रामीण बंधु, अरहर की बुवाई के लिए खेत की तैयारी अवश्य करिए। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही आप खरीदिए। बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए जो तैयारी है उसमें राइजोबियम तथा फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से उपचार जरूर करिए तथा अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। किसान बंधु, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। उपचार के बाद बीजों के अंकुरण तथा उत्पादन में वृद्धि होती है, इसलिए बीज उपचार आवश्यक है। अरहर की उन्नत किस्में हैं LRG 41, बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1 एवं 2, बहार, ICPH 2671। इनमें से किसी एक किस्म का आप चुनाव करिए किसान भाई बहन। और मक्का की खेती तो अमूमन हमारे सभी ग्रामीण भाई बहन करते हैं, इसलिए जो किसान भाई मक्के की फसल लगाना चाहते हैं वे पहली गहरी जुताई के बाद हल से 2 से 3 बार जुताई करके अंतिम तैयारी के समय 5 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में अच्छी तरह जरूर मिला दें। बिल्कुल किसान भाई, अम्लीयता कम करने के लिए 1 से 1.5 क्विंटल चूना प्रति एकड़ की दर से कतार में डालकर मिट्टी में जरूर मिलाइए। फिर बीज को कतार से में डाल करके अच्छी तरह से आप ढक दीजिए और बुआई से पहले बीजों का उपचार अवश्य करिए। बीमारी, दीमक एवं धड़ छेदक कीट से बचने के लिए वेविस्टिन 50 WP की 2 ग्राम एवं बाद में क्लोरपाइरीफॉस 20 EC की 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से आप मिलाकर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। और अगर धान की बात की जाए तो हमारे किसान भाई बहन, धान के लिए भूमि तैयार करिए एवं उन्नत किस्मों के जो बीज हैं उसका प्रबंध आप कर लीजिए किसान भाई बहन। और धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए इसके उन्नत किस्में ऊंची भूमि जो है यानी टाड़ भूमि, उसमें बिरसा किसान धान 109, 110, 111 इसकी चुनाव आप कर सकते हैं। बिरसा धान 108 एवं वंदना इसकी भी आप चुनाव कर सकते हैं। और मध्यम भूमि के लिए यानी 2-3 एवं 2-2 भूमि के लिए सहभागी धान IR 36 या फिर IR 64, ललाट और नवीन या फिर बासमती इसकी चुनाव आप करिए। और निचली भूमि के लिए यानी 2-1 के लिए राजश्री, सवर्णा, संभा, महरूरी का प्रयोग करिए। और बीजों की बुआई से पहले, जी हाँ किसान बंधु, ये बार बार हम बातें करते हैं, बीज उपचार फफूंदनाशक पेविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार जरूर करिए। और किसान बंधु, बागवानी विशिष्ट सलाह जो हमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त है उसके अनुसार बैगन, मिर्च और भिंडी में मुरझाने या आंशिक मुरझाने से बचने के लिए नीम या करंज की खली का प्रयोग हम करते हैं और बेसल के साथ फोलियर का छिड़काव के रूप में टेबुकोनाजोल कवकनाशी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से मिला करके हमको छिड़काव करना है। और भिंडी की जहाँ तक बात आती है तो भिंडी में येलो वेनमोजक वायरस को नियंत्रित करने के लिए नीम का तेल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ सुबह के समय मिला करके आप इसे छिड़काव करिए। इस रोग के नियंत्रण को करने के लिए हमें पीले चिपचिपे जाल का भी उपयोग कभी कभी कर लेना चाहिए। जी हाँ किसान भाई बहन, और जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश की संभावना है। ऐसे में धान की पैदावार को बनाए रखने के लिए जलवायु अनुकूल फसल और पानी के प्रबंधन के तरीके को अपनाना अति आवश्यक है। और किसान भाइयों को यह सलाह भी दी जाती है कि कम समय में तैयार होने वाली और सूखे को सहन कर

0: आपको पहले से ही सचेत करना है किसान बंधु।
1: और किसान भाई, वैकल्पिक गीलापन एवं सूखापन और शुष्क प्रत्यक्ष विजित धान तकनीकों से पानी के इस्तेमाल की क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। सूखे को सहने की क्षमता और पौधे की मजबूती बढ़ाने के लिए शुरुआती खाद के तौर पर फास्फोरस 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आयरन 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सिलिकॉन 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का आप इस्तेमाल करें। बाली बनने की शुरुआत में अतिरिक्त पोटेशियम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने से तनाव सहने की जो क्षमता और पानी के इस्तेमाल की जो क्षमता है वह बेहतर हो जाती है। वहीं मिट्टी में बोरान 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालने से गर्मी और नमी की जो कमी के बावजूद पराग कणों के जीवन क्षमता, स्पाइकलेट की फर्टिलिटी और दाना भरने की प्रक्रिया ठीक बनी रहती है। इन उपायों को समय पर अपनाने से सामान्य से कम बारिश वाले मानसून की स्थिति में पैदावार में होने वाले संभावित नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। किसान भाई, खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान अरहर एवं मूंगफली की अंतर्वर्तीय खेती अपनाए। यह फसल प्रणाली कम वर्षा एवं सूखे की परिस्थितियों में अधिक टिकाऊ सिद्ध होती है। बीज दर अरहर के लिए 8 किलोग्राम प्रति एकड़ और मूंगफली के लिए 24 किलोग्राम प्रति एकड़ लें। अरहर की कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर और अरहर की दो पंक्तियों के बीच मूंगफली लें जिसकी दूरी 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई, मौसम की जो चेतावनी है उसमें फूल और फल का झड़ना, फसल गिरना, जल जमाव, ये सब सामान्य बातें हो सकती हैं। इसलिए आप फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और सहारा वाली फसलों को बांधें।
0: जी, और किसान बंधु, कार्यक्रम में तो ये हुई बातें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची, झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। और अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और
1: अंतराल के बाद पुनः हाजिर हुए।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर। हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा
4: परम तो सभी डाले
3: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है
3: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस संदेश के बाद पुनः आपका किसानवाणी कार्यक्रम में स्वागत है। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता एक महिला किसान से।

0: ભેટવાર્તાકાર હૈ ઓપોલીના ઓડિયા જો ગ્રામ નાવાડી પ્રખંડ ચેનપુર પલામુ કે નિવાસી હૈ ઇનસે બાતચીત કર રહે હૈ હમારે સાથી ભાઈ સંતોષ કુમાર
1: ખાસા લાભ કમાતી હૈ અપને પરિવાર કો ચલાતી હૈ પઢાતી લિખાતી હૈ બચ્ચો કો ઓર અપૂર્ણા જી બહુત બહુત સ્વાગત હૈ આપકા કાર્યક્રમ મેં નમસ્કાર
2: ઓર આપકો ભી નમસ્કાર કરતે હું
1: નમસ્તે યે અભી આપ ખેતો કી ક્યા ક્યા તૈયારી કર રહી હૈ ખરીફ કે લિયે
2: અભી હમ ખેતો કી તૈયારી અભી દેખીએ સબસે પહેલે તો હમ લોગ કા મકાઈ કા બુઆઈ સબસે પહેલે હોતી હૈ મકાઈ કા ફિર પાણી વાલા ધાન જો ક્યા બોલતે હૈ ઉસકો ઉસકો ક્યા બોલતે હૈ ક્યારી હલ ક્યારી મેં નહીં લગાતે પાણી ક્યારી મેં ઉ વાલા ધાન કા અભી પાણી નહીં હૈ ઇસીલિયે ઉસકા જોતાઈ ચલ રહા હૈ उसको हम लोग मैंने पहले ही उसको खेत तैयार कर देते हैं अगर मैंने घास ओस मरने के लिए उसको पहले ही जुताई करके खेत को तैयार कर रहे हैं अभी
1: अच्छा।
2: उसके बाद पानी गिरेगा उसके बाद पानी गिरने के बाद हम लोग उसको गाछी इधर तैयार करेंगे पानी गिरेगा तो गाछी डलाएगा उसके बाद उसको लगाने का प्रयास करेंगे फिर मकाई का अभी इन साल तो पानी गिरते जा रहा है पानी बरसते जा रहा है इसीलिए बहुत अच्छा मौका दिया है मकाई खेती करने का खेत तैयार करने का हम लोग अभी ऐसे मकाई लगाने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं खेत को जब भी पानी गिरेगा मैंने 15 जून के बाद ही उसको लगाते हैं मकाई उसके जब पानी गिरने लगेगा तो हम लोग उसको लगाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा फिर उसके बाद अभी मड़ुआ का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी गर्मी में ही उसको गच्ची डालने के लिए हम लोग उसको जितना भी आलियर का त्वार है उसको हम लोग पहले उसको जलाते हैं जहाँ गच्ची डालते हैं उस जगह को जलाते हैं इसीलिए जलाते हैं ताकि वहाँ का घास फूस जो भी हो वो मरे और केवल गाछी मड़ुआ केवल अच्छा से हो इसीलिए उसको पहले जलाते हैं उसके बाद उसके ऊपर हम लोग राख के ऊपर ही हम लोग खाद जो बकरी का हो या गाय का हो उसको हम लोग डालते हैं मिला देते हैं उसके बाद जब पानी गिरेगी अभी तो नहीं अति किए हैं उसको बस उसको जला करके उसको तैयार कर रहे हैं उसके बाद जब पानी गिरेगा तो उसको हम लोग हल चला करके उसको हम लोग तैयार कर देते हैं गाछी डालने के लिए
1: जी जी।
2: उसके बाद हम लोग उसको बढ़िया से समतल करके ऊपर में हम लोग गाछी छीट देते हैं मड़ुआ का उसी लेवल पर उसके बाद हम लोग उसको ऊपर ऊपर हाथ से माने थोड़ा थोड़ा उसको मट्टी में छुपना चाहिए ज्यादा नहीं छुपना चाहिए नहीं तो नहीं जमेगा उसको हल्का हल्का छुपना चाहिए इसीलिए हम लोग हाथ से अथी करके उसको कर देते हैं उसके बाद बढ़िया जमता है
1: अच्छा।
2: इस प्रकार माने हम लोग मड़ुआ की खेती बेहतर हम लोग कर रहे हैं और पहले बहुत खेती होता था मड़ुआ लेकिन मड़ुआ का जो भी हम लोग इसका जो भी महत्व है लाभ है उसको हम लोग नहीं जानते थे इसीलिए मड़ुआ का खेती तो करते थे लेकिन उसको उतना ध्यान नहीं देते थे खाने का लेकिन अभी उसका महत्व जैसे हम लोग समझ गए हैं कि मड़ुआ खेती करने से खाने से क्या महत्व है इसी के वजह से हम लोग उसको खेती करके हम लोग खाने खाते हैं बेचते नहीं हैं उसको
1: जी जी।
2: फिर ग्रामीण किसान लोगों को भी जैसे किसानों से हम लोग जुड़े हुए हैं किसान लोगों से किसान भाई बहनों से हम लोग काम कर रहे हैं गांव-गांव में जा करके संगठन बना करके वहां जा करके हम लोग मोटे अनाज जो भी खाने से क्या फायदा है उसको हम लोग बताते हैं जैसे मोटे अनाज मड़ुआ मकाई बजरा चाहे गोंदली हो सावा हो उस सब क्यों हम लोग इसको लुप्त कर रहे हैं और उसके पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं हाइब्रिड के पीछे हम लोग जा रहे हैं
1: अच्छा।
2: इस चीज़ को हम लोग ग्रामीण किसानों को बताते हैं और इस सब को बरकरार रखने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या माने मड़ुआ जो भी हम लोग जिसका कमजोरी है जिसका ब्लड नहीं है जो कमर दर्द जोड़ जोड़ दर्द हाँ उसको मड़ुआ का हलवा चाय रोटी खाने से ब्लड भी बनता है कैल्शियम भी हड्डी में अति करता है
1: ये तो मड़ुआ की खेती की बातें हो रही थी
2: जी हाँ।
1: और सावा कोदो की अगर हम बात करें तो
2: सावा कोदो का भी वही चीज है सेम टू सेम वही है जैसे उसका मातवा को आप बोल रहे हैं ना, मातवा भी वही है उसका। जैसे पहले बुजुर्ग लोग, हम लोग का दादा दादी जे भी थे पहले, वो लोग वही सब खेती करके खाते पीते थे। पहले धान की खेती हम लोग का में नहीं होता था, क्यारी नहीं था। हम लोग का टाण टिकोर में खाली घोड़ा धान केवल लगाते थे
1: जी।
2: और मकाई और दलहन में वही कुर्थी अरहर सब, अरहर सब
1: वगैरह की खेती होती है।
2: खेती होती है, बहुत अच्छा होता है।
1: कुर्थी
2: का भी करते हैं इसका, इसका कुर्थी का दाल। आप कुर्थी का पूछे तो हम उसका भी आपको हम बता दे रहे हैं। कुर्थी बहुत कोई नहीं पसंद करते हैं, लेकिन कुर्थी दाल खाने से कितना उसका लाभ है, उसका महत्व है, लोग नहीं जानते,
1: नहीं जानते,
2: नहीं पसंद करते हैं। बहुत कोई नहीं पसंद करते, लेकिन हम लोग बहुत पसंद करते हैं उसका। जिसका पथरी है पेट में, हम लोग खाते खाते कुछ मैंने पत्थर सब घुस जाता है तो उसी में पथरी का असर करता है जी। अगर कुर्थी दाल अगर आप डेली खाते हैं तो वो आपको पथरी
1: नहीं
2: गला देगा, इसीलिए बहुत महत्व है कुर्थी दाल खाने के लिए। इसीलिए हम लोग इसका, हम लोग ये कुर्थी दाल को लगाने के लिए हम लोग नहीं छोड़ते हैं।
1: तो कुल मिलाकर के अभी मड़ुआ की खेती की तैयारी चल रही है।
2: हाँ।
1: और इस बार बृहद पैमाने पर मड़ुआ की खेती करने की तैयारी हो रही है।
2: बहुत,
1: पिछला साल कितना उत्पादन हुआ था?
2: बीते साल देखिए हम लोग को केबे की तरफ से भी मिला था, चचार कीजी मिला था, फिर ब्लॉक तरफ से भी चचार कीजी मिला था। हम लोगों ने लगाया, मैंने चार कीजी तो मैं नहीं लगाई, लेकिन मात्रा मैं दो कीजी लगाई थी। सबको तो हम लगाए नहीं, लेकिन इसमें हमको 4 क्विंटल का फायदा हुआ।
1: 4 केजी में 4 क्विंटल
2: जी। और क्या बोलेंगे, हम लोग की तरफ तो नील गाय भी बहुत है।
1: हाँ, हाँ।
2: इसीलिए थोड़ा सा बचाव के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसको। हम लोग तो दिन को तो कैसे नो रखवाली कर लेंगे, लेकिन रात में आके खा जाता है, इसीलिए उतना बढ़िया नहीं।
1: तो नील गाय
2: हुआ।
1: का प्रकोप आप लोग तरफ भी है?
2: हम लोग तरफ भी है, बहुत है नील गाय। दिन में भी गाय माने क्या बोलेंगे, गाय बकरी की जैसा वो लोग चर जाता है, डरता ही नहीं है उसको, क्या कीजिएगा बताइए।
1: पड़ा कावड़ा का छोड़ना वगैरह से नहीं भागता है?
2: भागेगा, लेकिन उतना नहीं डरता है वो लोग। अच्छा। नहीं ना डरेगा। हाँ, रात में तो रात में, दिन में तो कैसे ना हम लोग भगा ही लेंगे, लेकिन रात में तो कैसे कीजिएगा, दिक्कत होता है।
1: तो घेरानी उरानी करने से भी कोई
2: घेरा
1: फायदा?
2: कितना को घेरा लगाइएगा सर?
1: सही बात है,
2: घेरा लगाने
1: एक से एक एकड़ खेत में कहाँ घेरा।
2: और मड़ुआ मैंने 2 केजी में 1 एकड़ आपका आराम से लगेगा, गाछी आपका नहीं खत्म होगा।
1: अच्छा
2: जी। हाँ,
1: लेकिन बचाना है इन लोग से
2: जी, लेकिन बचाना है। और
1: अब सब्जियां की खेती क्या करते
2: हैं? सब्जियां का खेती, सब्जी का खेती भी हम लोग करते हैं। अभी मेरा बगान में वही गर्मी वाला सब्जी है।
1: अच्छा।
2: जैसे अभी कद्दू है, करेली है, नेनुआ है, बोदी है, भिंडी है, और बस उतना ही है अभी। अभी कद्दू एकदम भरखरार अभी फल रहा है।
1: अच्छा।
2: और जो नेनुआ जो बोल रहे हैं अभी अभी शुरू हुआ है, और बोदी का भी अभी अभी फूलना शुरू हुआ है।
1: अच्छा, मतलब लेट से लगा दिए?
2: लेट से थोड़ा सा लगा दिए हैं, इसीलिए।
1: तो निकलेगा मई जून फर्स्ट वीक तक हमको
2: निकल
1: लगता है कि प्रथम सप्ताह तक आप उत्पादन लेकर के बेचेंगे?
2: जी हाँ
3: जी। हाँ, किसान भाई बहन, बातें हो रही थी एक महिला कृषक ओपोलिना ओड़िया से। और अब चूंकि हमारा समय हो चला है मौसम संबंधित जानकारियों का,
0: आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 49%, जबकि शाम की आर्द्रता 43% दर्ज की गई। वर्षापात 0।
3: और इसी जानकारी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
0: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाजत।
3: नमस्कार।
4: सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में झारखंड को केवल खनिज उत्पादक राज्य नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, कृषि, खेल और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहलों की जानकारी देते हुए केंद्र से विभिन्न परियोजनाओं और संस्थानों के लिए सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की बाकी राशि जारी करने, कोयला कंपनियों के बकाया भुगतान, मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के सरलीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों को मानव पूंजी से जोड़कर राज्य को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में राज्यों को पर्याप्त केंद्रीय सहायता राशि दी जा रही है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है।
1: 81 करोड़ों को केंद्र द्वारा यहाँ पर राशन भेजा जाता है, क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। और 60 करोड़ लोगों को 5 करोड़ से अधिक की राशि आयुष्मान कार्ड से लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। अगर गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं।
0: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में नेशनल टास्क फोर्स की बैठक सह टीबी मुक्त भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की मदद से वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।
2: टीबी कैसे दूर करें इस राज्य से, क्योंकि झारखंड में अभी तक लगभग 6,000 से अधिक पेशेंट हैं हमारे। तो मैंने तमाम जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रियों से मैंने आग्रह किया है कि आपके गांव में भी यदि कोई पेशेंट है तो उनको आप लोग चिन्हित करें। हम लोग मुफ्त में टीबी का इलाज करते हैं। 1,000 रुपया हम लोग हर मंथ मिलाते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको देते हैं। जहाँ तक कि हम लोग ने एक फ्रेंड जो बीमारी टीबी ठीक हो जाता है वैसे मरीज को हम लोग गाँव में भेजते हैं। तो आप प्रचार करो कि कहाँ पर आपका पेशेंट है, ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है, इसे घबराना नहीं है। और भारत सरकार ने कहा था कि 2025 में टीबी मुक्त करेंगे, लेकिन 2025 हुआ नहीं। हम लोग 2029 में हम झारखंड को टीबी मुक्त झारखंड बनाएंगे।
0: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आगामी 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम जारी होंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन आज किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। अब झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक राज्य के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपनी मैपिंग कराई। श्री कुमार ने अनमैप्ड मतदाताओं से जल्द मैपिंग प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 3 प्रतिष्ठित लोक कलाकारों को संयुक्त रूप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन कलाकारों में बूटन देवी, सोमवारी देवी और सरायकेला खरसावां के छऊ मुखौटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्र शामिल हैं। श्री महापात्र ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।
3: मैं एक पारंपरिक घराना का हूँ, ये मुझे तो दुख भी लग रहा है कि मुझे बहुत देर में मिला हूँ। मैं छो के लिए समर्पित हूँ, छो के लिए काम करूंगा। ये हमारा परंपरा है, 3-4 पीढ़ी हो गया। मेरे बड़े चाचा थे जो सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर को जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाए हैं।
0: पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बीच केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग हुई, जिसके आलोक में 1,49,00,000 की डिलीवरी की गई।
4: देश में क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम क्षमता पर चल रही हैं। पिछले 3 दिनों में 1.40 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग रिसीव हुई है। इसके अगेंस्ट 1.49 करोड़ डिलीवरी की गई है। अफवाहों से बचे, जहां पर भी संभव हो वहां अल्टरनेट सोर्स का उपयोग करने का प्रयत्न करें।
0: प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामताड़ा जिले के लोगों, विशेषकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंद लोग जन औषधि केंद्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ सस्ती और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, जो गरीबों को बहुत आवश्यकता अनुसार काम कर रही है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ।
0: रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार विकास के नाम पर किसानों की कृषि योग्य भूमि छीन रही है।
6: रिम्स 2 बने, आदिवासी समाज कभी भी विरोध नहीं किया है। पूरे झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों का ही जमीन दिया गया है। 11-12 में भाजपा सरकार इस जमीन को छीन रही थी, उसके बाद शिबू सोरेन जी उनके आह्वान पे ये जमीन को बचाया गया है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है हमारे दिसुम गुरु को, ये नगरी का जमीन 227 एकड़ खेतीहारी जमीन को पूरे आदिवासी समाज को उपहार देने का काम करे।
0: राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवा और गरज के साथ प्री मॉनसून की मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पड़ोसी राज्य बिहार में आज मॉनसून ने दस्तक दी है। इसके राज्य में 2-3 दिनों में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 17 जून तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की महिला चयन समिति ने 3 T20 श्रृंखला के लिए आज 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। श्रीलंका दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय इस टीम में झारखंड की कुमारी पलक का भी चयन हुआ है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में दो तीन दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा, झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: कोडरमा जिले का सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड भी अब रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। बिहार के नवादा से गिरिडीह तक नई रेल परियोजना के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस नई रेल परियोजना के तहत कोडरमा के सतगावा प्रखंड के अलावे गिरिडीह जिले के तीसरी और गावा भी रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस नई रेल परियोजना से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कई सुदूरवर्ती इलाके रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को न सिर्फ आवागमन में सुविधा होगी बल्कि रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे।
2: सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और माननीय रेल मंत्री जी को कि उन्होंने सतगावा, कोडरमा और गिरिडीह जिले के अंतर्गत पड़ने वाले वैसे हजारों हजार लोगों की भावना को उन्होंने सम्मान दिया है और वर्षों से इसकी मांग थी कि नवादा से सतगावा गावा तीसरी को गिरिडीह के साथ जोड़ा जाए। तो इसमें दो राज्य जुड़ेंगे और इसमें हजारों हजार लोगों को फायदा होगा और निश्चित रूप से जब रेल लाइन बनेंगे तो उसके बाद क्षेत्र का भी विकास होगा।
1: झुमरी तिलैया के इंदरवा में 20 महिलाओं का समूह जूट से उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। महिला विकास समिति के बैनर तले राधा यादव के नेतृत्व में आसपास की 20 महिलाएं यहां जूट से अनेकों तरह के उत्पाद तैयार कर बेहतर आमदनी कर रही है। घरेलू कामकाज के साथ हो रही इस आमदनी से महिलाएं उत्साहित हैं और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में जुटी हैं।
3: हम लोग ऐसे तो घर में बैठे हुए रहते थे, कुछ यहाँ जुड़ने के बाद राधा दी बोली कि यहाँ आओ कुछ सीखते हैं, हम लोग भी सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग हो चुका है। ऐसे घर में गप्पे लड़ाते थे इधर से उधर, कहीं यहीं कभी सोना कभी बैठना, तो हम लोग सोचे फिर क्यों वहाँ गप्पे लड़ाए, फिर यहाँ आए तो कुछ थोड़ा सा कुछ रोज नया चीज सीखे। पति का भी हाथ बटाते हैं, बच्चों का स्कूल का फीस वगैरह हो गया, वो चीज में भी हम लोग का भी रहता है, हम लोग का इनकम जो होता है उससे हम लोग करते हैं।
1: जिले के अंगीभूत कॉलेजों को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से गिरिडीह के सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जहां छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
4: एक छोटी सी बात है, 54 किलोमीटर हजारीबाग जाने की दूरी, 125 किलोमीटर गिरिडीह जाने की दूरी, और यही दूरी के चलते विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना और फिर से आप इसको गिरिडीह ले जा रहे, आखिर इसे हम क्या कहें। अरे राजनीति आती जाती रहती है, पद आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि राज्य हित में न हो, क्षेत्र हित में न हो, छात्र हित में न हो।
1: कोडरमा से हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय की दूरी तकरीबन 55 किलोमीटर है, जबकि गिरिडीह सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी 125 किलोमीटर दूर। ऐसे में विश्वविद्यालय स्थानांतरण से कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी होनी लाजमी है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं बॉर्डर इस फिल्म के गीत से। आवाज रूप कुमार राठौर की है, गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

अगला गाना हमने लिया है क्रांति फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है, गीत के बोल संतोष आनंद के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत

दीवाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू, अलगा याग्निक और साथियों की आवाज़ों में नदीम श्रवण की संगीता और समीर का बोल। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में आज इस फिल्म से आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और चंदना दीक्षित की है, गीत के बोल सुधाकर शर्मा के हैं और संगीत दिया है संजीव दर्द।

अनुराधा पौडवाल और चंदना दीक्षित के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उजाले की ओर। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं सत्येंद्र कुमार पांडे की वार्ता। विषय है उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन।

उर्दू भाषा हमारे लिए एक भाषा नहीं बल्कि साझी विरासत है। हमें उर्दू भाषा को देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए, विशेष रूप से आधुनिक तकनीकी का उपयोग इस भाषा के विकास के लिए करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री भी अन्य भाषाओं के साथ उर्दू भाषा के विकास और संवर्धन के लिए गंभीर हैं। यही कारण है कि सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसमें उर्दू भाषा के विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, क्योंकि उर्दू भारत की ऐसी भाषा है जिसके अधिकार शब्द इस देश के सब भाषा में अधिकांश पाए जाते हैं। स्वयं उर्दू में भी हिंदुस्तान के अलग भाषाओं के शब्द मिलते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज उर्दू सहित सभी भाषाओं के विकास पर जोर दिया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकादमी का गठन किया जाएगा तथा केंद्र सरकार की ओर से विशेष उपाय किया जाना तय है। नई पीढ़ी के बीच उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। उर्दू शब्द को शहरों के अलावा गांव-गांव तक ले जाने की आवश्यकता है। साथ ही गांव में इसके प्रचार के लिए आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन करके भाषा सीखने वालों को प्रोत्साहित करने की योजना है। उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों के घनी जनसंख्या वाले गाँव में स्थापित की जाए। उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती एवं तैनाती के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम 1/4 जनसंख्या की सेवा करते हैं। मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण की योजना, एरिया इंटेंसिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय योजना अंतर्गत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षणिक अधोसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण का प्रावधान करना, साथ ही उर्दू के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना है। उर्दू का समग्र विस्तार हो इसके लिए सहायता अनुदान अनुभाग बनाया गया है। इसके तहत जो कार्यक्रम किया जाना है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, मुशायरे हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम, इन स्कीमों का ध्येय उर्दू भाषा का विकास वाली सक्रियताओं हेतु अन्य संस्थाओं की सहायता करना है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न एनजीओ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट के अतिरिक्त व्यक्तियों को भी सहायता की जाती है। सोसाइटी एवं ट्रस्ट के मामले में उनका नीति आयोग एनजीओ पोर्टल दर्पण पर निबंधित होना आवश्यक है। इसी अवस्था में ही ट्रस्ट सोसाइटी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती। जिन संस्थाओं या व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी जाती है उनको पैसे के प्रयोग का सर्टिफिकेट एवं आयोजित प्रोग्राम का विस्तृत रिपोर्ट परिषद के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु ऑब्जर्वर भी भेजे जाते हैं। पांडुलिपियों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम, इस स्कीम का ध्येय स्तरीय उर्दू के मैटर के प्रकाशन को बढ़ोतरी देने के मकसद से उर्दू, अरबी, फारसी के लेखकों, अनुवादकों, संकलनकर्ताओं एवं प्रकाशकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम का पहले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है एवं फिर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को GIA कमेटी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। मान्यता मिलने के बाद वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चुनी गई पांडुलिपियों को पूरक कॉपियाँ पूरे देश के विभिन्न लाइब्रेरियों में

वितरित की जाती है। योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम, यह स्कीम उर्दू, अरबी एवं फारसी में शोध के कार्यों एवं शैक्षणिक योजनाओं के विकास हेतु तथा उर्दू, अरबी और फारसी में स्तरीय शोध के मैटर उपलब्ध करने के मकसद से तैयार की गई है। यह किसी संस्थान या स्कॉलर को किसी महत्वपूर्ण योजना हेतु वित्तीय सहायता के मकसद से पहले विज्ञापन दिया जाता है, तत्पश्चात कमेटी के सिफारिश पर योजना को स्वीकृति दी जाती है। कमेटी के सिफारिश के बाद सॉफ्ट कॉपी NCPUL की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। पुस्तकों, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स की भारी मात्रा में खरीदारी, इस स्कीम का ध्येय भारी मात्रा में उर्दू पुस्तकें, पीरियोडिकल्स एवं जर्नल खरीदकर देश के कोने कोने के स्थित लाइब्रेरी संस्थानों में बांटकर एवं उर्दू, अरबी और फारसी लेखकों, संपादकों, अनुवादकों एवं प्रकाशकों का स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन हेतु प्रोत्साहन करके उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार करना है। शैक्षिक कार्य, उर्दू अध्ययन केंद्र की स्थापना, कंप्यूटर अनुप्रयोग, व्यवसाय लेखांकन और बहुभाषी DTP केंद्र की स्थापना, इन केंद्रों को चलाने हेतु प्रत्यायन, सुलेख और ग्राफिक डिजाइन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि उर्दू का समग्र विकास संभव हो सके। इन तमाम कार्यक्रमों के केंद्र बिंदु में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। उर्दू भाषा के विकास, प्रगति एवं प्रसार के लिए इसे स्थापित किया गया है, जो 1 अप्रैल 1996 से दिल्ली में काम करना आरंभ किया। आज उर्दू भाषा के विकास की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित है, जो उर्दू भाषा और उर्दू शिक्षा की प्रगति के लिए पर्यवेक्षक संस्थान के रूप में स्थापित हो गई है। उर्दू के विकास में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक, पत्रिका आदि का प्रदर्शनी लगाकर नई तकनीक का प्रयोग कर इस भाषा के विकास में अपना योगदान दे रही है। ये संस्थान अंग्रेजी, हिंदी और दूसरी आधुनिक भारतीय भाषाओं में उर्दू विकास के लिए योजना, परियोजना तैयार कर उनका परिचालन कराती है एवं करती है। उर्दू भाषा के समग्र विकास में इस संस्थान का अमूल्य योगदान है।

आप सुन रहे थे सतेंद्र कुमार पांडे की वार्ता, विषय था उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन। और अब इसी वार्ता के साथ कार्यक्रम उजाले की ओर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। हमारा अगला प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस अंतराल के बाद अब आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अग्नि साक्षी इस फिल्म के गीत से। आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो की हैं, समीर के बोल हैं, संगीत दिया है नदीम शर्मा।

कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी कि 8:10 पर आप सुनिएगा वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम हमारे राज्य केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ, और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर है आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
2: सबके साथ है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। तो यही तो अपनापन है
1: शिवराज जी। अब क्योंकि

0: हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं, और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
0: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
1: देखिए, एक तो संकट है
0: जिसको इतिहास याद रखेगा,
1: 25 करोड़। देखिए, इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं, और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
0: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? एलओपी तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल में चले
1: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
0: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
1: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
0: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
1: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी? लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
0: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
1: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
0: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
1: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़। नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
0: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
0: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?

0: हकीकत तो ये जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। रियल 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे।

0: कि सब वर्चुअल जुड़ेंगे और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी तीन गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, एआई नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए एआई का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे एआई के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो के भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहाँ अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया कि उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या है?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो काम करो काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो।

0: जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे। इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ। उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था, जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव, जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप, अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉक यार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी को उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा, बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपने ही सभ्यता

0: जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारे दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना, सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस ओर हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। आकाशवाणी का ही रांची केंद्र है। अब
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर।
2: श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल

0: तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब

0: 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit will provide an opportunity.
2: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000

0: हजार करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
6: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
7: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।

0: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इकतसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैनुफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने

वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बा इख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैनुफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वाजे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यू की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम मिलेगा और दरामदात पर इन्हिसार में कमी आएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इससे शुमाल मशरक में अमन और इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी, इससे सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। भारत ने आज अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और ओमान के साहिल के करीब पालाउ झंडे के हामिल टैंकर एमटी सेटबेलो पर हुए हमले के सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस हमले में तीन भारतीय बाशिंदों की जानें तलब हुई हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने खित्ते में जहाजरानी पर जारी हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाजे से है। उन्होंने इस तरह के वाकयात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल करने की गरज से मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। खलीजी डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने कहा कि हुकूमत मगरबी एशिया की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और भारतीय मिशनों से 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही हैं और ये मिशन मकामी हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एमटी मैरीवैक्स पर सवार अमले के सभी 24 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है और उनके जल्द ही भारत वापस आने की उम्मीद है। इस जहाज को इस माह की 8 तारीख को ओमान के साहिल के नजदीक निशाना बनाया गया था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा कि एमटी सेटबेलो से बहिफाजत निकाले गए अमले के 21 भारतीय अफराद महफूज हैं, जबकि हलाक होने वाले तीन मल्लाहों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एमटी जलवीर पर सवार अमले के सभी 22 भारतीय अफराद महफूज हैं और उन्हें बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कीमियावी खाद और ईंधन की सप्लाई मुस्तहकम रहेगी, इसका खातिर खाद जखीरा दस्तियाब है और मुल्क की रिफाइनरीज अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं। शहरियों से जोर देकर कहा जाता है कि वो घबराहट में खरीदारी से गुरेज करें।
وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے۔ آج سے پہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری CB جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا۔ انہوں نے

जर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाज़े के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तशवीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के दो रोज़ा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायजा लेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दो मर्तबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप 2026 का आगाज आज मेक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम स्टेडियो एस्टिका में होगा। इसके साथ ही एक माह से ज्यादा अरसे तक चलने वाले इस अजीमुश्शान टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। इफ्तिताही मुकाबले के ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब तक का यह सबसे बड़ा आलमी कप होगा जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 104 मैच खेले जाएंगे जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होंगे। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें तीन भारतीय मल्लाहों की जान तलफ हो गई। उसने अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरा।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद, ही इज ऑल्सो प्रिविक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी rather than gossip। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा, और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रहे हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: बताएंगे कौन कौन आते थे? उस्ताद
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था, अल्लाह
0: अल्लाह रखा खान
1: रखा साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार, जो बहुत जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही,
1: जी,
0: इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तिरकवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सबको देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ

0: पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
1: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं अखियों के झरोखों से। इस फिल्म के गीत से आवाज़ हेमलता की है।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत की बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं फिल्म कभी कभी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

कभी कभी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म कर्तव्य में।

मैं तुलसी तेरे आंगन की। आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हम शक्ल।
1: इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म आराधना में।

आराधना फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण

0: और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the four stages of life.

का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से